0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: श्रोतागण सुप्रभात, प्रणाम। अभी बज गए बा सुबह के 6 बजते ही हाजिर बाड़ी राव रेडियो दोस्त दीपाली। आज स्वागत करतारी रउआ सबके आपन प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। दोस्त लोग, हर रोज की तरह आज भी हमरा पास बा बहुत सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, जैसे राव स्वास्थ्य के साथ ही साथ सौंदर्य भी निखरी। चलिए आगाज किए जाओ आज के शो के, जिमे हम बताएं सबसे पहले खीरा के असरकारी नुस्खा के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार खीरा स्वादिष्ट, शीतल, प्यास, दाह पित्त और रक्त पित्त दूर करे वाला रक्त विकार नाशक है। एकर औषधीय लाभ ई प्रकार है कि एक कब्ज दूर करेला, पीलिया, ज्वर, प्यास, शरीर के जलन, त्वचा रोग, छाती में जलन, अजीर्ण व एसिडिटी में फायदेमंद होला। मोटापा से परेशान लोग सलाद के रूप में एकर प्रयोग करे तो लाभ हुई, इसे गुर्दा की समस्या दूर हो सकेला। भूख ना लागे की स्थिति में एकर सेवन करे से भूख बढ़ेला। खीरा के टुकड़ा आँख पर रखे से आँख के नीचे के कालापन दूर होला। खीरा के रस में नींबू मलाई मिला के लगावे से चेहरा के रंग निखरेला। तो दोस्त लोग, चली आप जानल जाओ आँख में खुजली होके पर का करे के चाहिए। दारू हल्दी 25 ग्राम, शुद्ध मधु 25 ग्राम और तुथ्य भस्म 1 रत्ती। पहले 1 लीटर पानी में दारू हल्दी के डाल के यथाविधि क्वाथ बनाई। आधा शेष रह जाए पर एके उतार के साफ कपड़ा से छान ली। फिर एक क्वाथ में शुद्ध शहद मिला के फिल्टर पेपर से छान के शीशी में भर के रख ली। ऊपर से एमे तुथ्य भस्म के मिला दी। ई नेत्र विकार खातिर उत्तम अंजन है। एके विधि ई प्रकार है कि दो दो बूंद रोगी के नेत्र में दिन में 2-3 बार डाली। ई प्रयोग से आँख की खुजली, आँख से पानी बहल, नेत्र लालिमा आदि विभिन्न नेत्र रोग में लाभ होला। गुलाबी फिटकरी आधा ग्राम, गुलाब अर्क 40 मिलीलीटर में डाल के 3-3 बूंद आँख में 3 बार डाली और कनपट्टी पर गीला चूना के 1 इंच लेप कर दी। नीम के उबाली आ ओ पानी से नेत्र धोई। दोस्त लोग, आँख शरीर के सबसे नाजुक अंग होला, अतः ये सब कोनो उपयोग करे से पहले अपना निजी चिकित्सक की सलाह अवश्य ली। चलिए अब हम बता दी सुंदर और स्वस्थ आँख खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। खूबसूरत और स्वस्थ आँख खातिर कुछ नुस्खा के खाली पेट सेवन करी, जैसे आधा चम्मच मक्खन, अमूल मक्खन भी ले सकता नी। आधा चम्मच पीसल मिश्री और थोड़ा सा पीसल काली मिर्च स्वाद के अनुसार मात्र में लेके ये तीनों के मिला ली और चाट ली। एक बाद कच्चा नारियल के दो टुकड़ा खूब अच्छा तरह चबा के खा ली। अब थोड़ा सा सौंफ मुंह में डाल ली, एक आधा घंटा तक मुंह में रख के चबाते चूसते रहें। एकरा बाद एके निगल जाएं। प्रतिदिन भोजन के साथ 50 से 100 ग्राम मात्रा में पत्ता गोभी के पत्ता बारीक कतर के एपर पीसल होकर सेंधा नमक और काली मिर्च बुरक के खूब चबा चबा कर खाएं। जब गाजर उपलब्ध होके तब प्रतिदिन एक दो गाजर खूब चबा चबा के खाएं या एके रस निकाल के भोजन के घंटा भर बाद पी जाएं। एक ग्लास साफ ताजा पानी में नींबू के 5 से 6 बूंद टपका के ये पानी से प्रातः आंख धोवल करी। प्रातः एक चम्मच त्रिफला चूर्ण एक ग्लास पानी में डाल के घोल ली और ढक के रख दी। रात के सोते से पहले ये पानी के कपड़ा से छान ली और अपन आंख ऐसे धोई। समय ये दोनों प्रयोग करे के बाद आँख पर ठंडा पानी के पट्टी रख के 10 मिनट लेटल रही। ये दोनों प्रयोग सुबह शाम रोजाना कम से कम 6 माह लगातार करी। रोज ना कर सकता नहीं ता एक दिन छोड़ के या सप्ताह में 2 बार अवश्य करी। अपना आहार में पत्ता गोभी, गाजर, आंवला, पाकल लाल टमाटर, हरा धनिया, सलाद, केला, संतरा, छुहारा, हरी शाक सब्जी, दूध, मक्खन, मलाई, पाकल आम आदि में से जौन जौन के सेवन कर सके तब प्रतिदिन उचित मात्रा में अवश्य सेवन करें। घर में बनल काजल रात में सोते समय आँख में लगावे के चाहिए और सुबह गीला कपड़ा से आँख के पोंछ के साफ कर ले। और ये सब करते वक्त चेतावनी ये रखे के बाद कि आँख शरीर के सबसे नाजुक अंग होला, अतः कोनो भी प्रयोग अमल में लावे से पहले अपना निजी चिकित्सक की सलाह अवश्य ले। सूर्योदय से पहले हरा धूप पर नंगा पांव 15 से 20 मिनट टहलल करें। गर्मी के दिन में एक दिन छोड़ के पैर के तलवा में मेहंदी के लेप करें। शुद्ध घी के मालिश भी कर सकता नहीं। एक दिन मेहंदी लगाएं, दूसरे दिन शुद्ध घी लगा के तलवा के मालिश करें। आँख के चारों तरफ कोनो क्रीम या सरसों के तेल लगा के मालिश करें। ककड़ी या आलू के गोल काट के पतला स्लाइस आँख पर रखें। आँख के चारों ओर आलू के रस लगाएं तो आँख दुखे व जलन में आराम मिले। बर्फ के पानी के फोहा बना के या दूध के फोहा बना के आँख पर रखे से भी आँख दर्द, आँख के आसपास कलापन आदि में आराम मिलेला। गुलाब जल के कोनो ठंडा जगह या फ्रिज में रख के एक फाहा बना के आँख पर रखी। आँख में दो दो बूंद गुलाब जल डाली, बहुत आराम मिली। ऐसे के पालन कमजोर आँख और चश्मा लगावे वाला के तक करे के ही चाहिए, बल्कि स्वस्थ आँख वाला भी जितना बन सके एक ही नियम के पालन करे तो आँख की ज्योति कमजोर ना हुई। और ये चश्मा लागे की नौबत ना आई, इन नियम के नियमित रूप से पालन करते हुए खटाई, लाल मिर्च, तेज मिर्च मसालेदार व्यंजन के सेवन ना करें। ऐसे 5 से 6 माह में ही अशातीत लाभ नजर आवे लगी। ये सब प्रयोग कौनो भी आयु वाला लोग कर सकता। तो दोस्तों अब उ समय आ गई बा जेमे दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। ता हंसी खुशी के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के विदा। नमस्कार।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0-97-06-575।
11: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव ज्ञान का भंडार है, शिव शिक्षा का महत्व सिखाते हैं। अब आगे।
12: और भाई क्या हुआ, ये गौरव इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है?
13: अरे जूही बात नहीं कर रही है इससे।
12: क्यों भाई, क्यों बात नहीं कर रहे भाभी जी?
13: अरे उसकी सीट चेंज हो गई है ना।
14: अरे यार मत परेशान करो इसे। गौरव तू बता क्या हुआ?
12: यार वो जो नया लड़का आया है ना ऋषि, वो आजकल उससे ज्यादा बातें करती है। मेरा मन तो करता है उस ऋषि का मुंह तोड़ दूं।
15: हाँ हाँ तोड़ दे, रुका किसके लिए?
13: हाँ हाँ भाई हम सब है, तो अभी आएगा तो यहीं पे उसका मुंह तोड़ देंगे।
14: हे वो आ गया, चल चल चल।
16: हाय गाइस।
12: आजा आजा इधर आ, देखता हूँ तुझे।
15: तेरी तो
16: अरे अरे छोड़ दो। अरे मत
12: करेगा बात उससे, करेगा बात अब।
15: अरे ये कर क्या रहे हो? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे?
12: ये हमारी भाभी के साथ बहुत चिपक रहा है आजकल।
13: हाँ और ये अपने दोस्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें?
12: निकल यहाँ से वरना मैं तेरी तो।
16: तुम लोग पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगा।
14: अब प्लीज जाइए यहाँ से। अरे यार अगर इसने सच में कुछ प्रिंसिपल से कहा
12: तो क्या, वहाँ उसके सामने मुंह तोड़ देंगे उसका।
14: गाइस क्या मैं बीच में पढ़ सकता हूँ?
12: इतना तो पढ़ ही गया है, बोल आगे।
14: अरे तुम लोग इतनी सी बात पर मारा पीटी पर क्यों उतर आए? आपको नहीं लगता कि बात करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता था?
13: भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
12: और फिर अपनी प्रैक्टिस भी तो हो जाती है ना फाइट की, तो ये सब तो होते रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जूही बोलो।
17: यार तुम लोगों ने क्या किया यार, ये ऋषि ने तुम्हारी कंप्लेन कर दी है प्रिंसिपल से। तुम लोग पागल हो क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
12: अरे यार इस ऋषि ने तो सच में प्रिंसिपल को बता दिया।
14: अरे अब क्या करेंगे?
18: मुझे लगता है कि आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए।
12: उससे कभी नहीं।
14: अरे अभी क्या करना है वो सोचो।
12: देखते हैं भाई, यही बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो ही मदद कर सकते हैं हमारी।
18: मदद तो कर सकते हैं पर तुम्हें सही बात बताकर।
12: वो कैसे?
18: मैं तुम्हें उनकी एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने कल परसों ही पढ़ी थी कहीं। एक बार भगवान इंद्र बहुत परेशान थे, तभी उनकी मुलाकात भगवान शिव से होती है।
19: क्या हुआ इंद्रदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं?
20: मत पूछिए महादेव, बड़ी उलझन में हूँ।
19: उलझन बताने से ही उलझन सुलझती है। बताइए, ऐसी क्या उलझन है आपकी जिसने आपको विचलित कर दिया है?
20: मेरी उलझन जयंत है महादेव।
19: जयंत, आपका पुत्र, वो आपकी उलझन का कारण कैसे हो सकता है?
20: महादेव, मेरा पुत्र बहुत ही उग्र प्रवृत्ति का होता जा रहा है। बात बात पर गुस्सा हो जाना, और चाहे देव हो चाहे गण हो, सबसे लड़ते रहना। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया है, किंतु वो है कि समझता ही नहीं। महादेव, आप भी तो एक पिता हैं, आप ही बताइए कि मैं अपने पुत्र को सही दिशा कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं उसे, उसके भीतर ये जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे कैसे दबाऊं।
19: ऊर्जा को कभी भी दबाना नहीं चाहिए इंद्रदेव, ऊर्जा को सदैव सही दिशा सिखानी चाहिए। जैन के भीतर की ऊर्जा को दबाने का प्रयास करने से वो फटकर बाहर निकलेगी, ज्वालामुखी के समान। जिस प्रकार ज्वालामुखी के भीतर ऊर्जा बनती रहती है और एक दिन फट जाती है।
20: तो क्या करना चाहिए महादेव?
19: एक काम करते हैं, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को बुलाता हूँ। पुत्र कार्तिकेय, इधर आइए।
21: प्रणाम पिताश्री, आपने मुझे बुलाया?
19: हाँ पुत्र, मेरा एक काम करोगे?
21: हाँ पिताश्री, आपकी हर आज्ञा शिरोधर है, कहिए।
19: पुत्र, इंद्रदेव के जो पुत्र हैं जयंत, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ एक मलयुद्ध करो।
21: पिताश्री, किंतु वो तो मेरे मित्र है।
19: हाँ, ये मलयुद्ध की प्रतियोगिता है, हम देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में अधिक बलशाली कौन है।
21: ठीक है पिताश्री, यदि ऐसा है तो मैं तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए।
19: आयुष्मान भव पुत्र।
20: महादेव, मैं कुछ समझा नहीं, ये आपने क्या किया?
19: आप सब समझ जाएंगे, कल सुबह प्रातः काल में हम यहीं मिलेंगे। आप जाइए और जयंत को बताइए कि मलयुद्ध की प्रतियोगिता यहीं होगी, और बाकी देवी देवताओं को भी आमंत्रण भेज दीजिए। कार्तिकेय पुत्र, जरा सुनना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
21: ठीक है पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए।
22: सभी देव और देवियों का इस समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक मल्ल युद्ध है, और इसका आयोजन स्वयं महादेव ने किया है। इसमें भाग लेने वाले युवक हैं शिव पुत्र कार्तिकेय और इंद्र पुत्र जयंत। दोनों ही युवक अत्यधिक बलशाली हैं। देखना यह है कि कौन इस प्रतियोगिता में विजयी होता है। तो इसी के साथ मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता आरंभ की जाए।
23: ये कार्तिकेय वार क्यों नहीं कर रहा?
24: ये अवश्य ही कार्तिकेय की कोई नीति है।
19: देखिए देखिए,
23: क्या बात है जयंत?
25: शाबाश कार्तिकेय।
24: कार्तिकेय जयंत को बस उकसा रहा है, वार नहीं कर रहा।
23: लेकिन ये देखो, इसका जयंत पर कुछ और ही असर हो रहा है।
24: जयंत अपना आपा खो रहा है।
25: जयंत तो सांड के समान कार्तिकेय पर वार करना चाह रहा है।
24: किंतु अब देखिए, जयंत थक रहा है, क्षमता खो रहा है वो अपनी।
26: अब नहीं छोड़ूंगा तुझे।
23: ये क्या, जयंत बहुत क्रोधित लग रहा है।
25: अरे अरे, ये क्या, कार्तिकेय क्या क्रीड़ा कर रहा है?
24: ये क्या, जयंत मुंह के बल गिर गया।
25: देखिए तो, जयंत और क्रोध से आगे बढ़ रहा है, परंतु कोई अनहोनी ना हो जाए।
24: आश्चर्य की बात है, पूरे युद्ध में कार्तिकेय ने एक बार भी प्रहार नहीं किया।
20: महादेव, ये क्या हो रहा है महादेव, कार्तिकेय प्रहार क्यों नहीं कर रहा?
19: बस कुछ ही देर में आप सब समझ जाएंगे इंद्रदेव।
26: कार्तिकेय, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, ये ले।
25: क्या? कार्तिकेय ने जयंत का हाथ पकड़कर उसे वश में कर लिया।
0: मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
1: और इस प्रतियोगिता के विजेता हैं महादेव पुत्र कार्तिकेय।
25: कार्तिकेय ने पूरा युद्ध बिना प्रहार किए बिना बल के जीता है।
0: वो कहते हैं ना, बल से बुद्धि बड़ी।
19: जयंत पुत्र उठो।
0: मैं पराजित हो गया महादेव।
19: कोई बात नहीं पुत्र, हार जीत तो लगी रहती है, किंतु इस प्रतियोगिता से क्या तुमने कुछ सीखा?
0: जी महादेव, मैं समझ गया कि क्रोध से उत्तेजना प्रकट होती है, और उत्तेजना से चाहे मनुष्य हो या देव, अपने सोचने समझने की सारी क्षमताएं खो देता है और दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगता है, जैसे मैं भाग रहा था, और वहां कार्तिकेय ने बल का प्रयोग किए बिना ही मुझे पराजित कर दिया। किंतु अब मैं क्या करूं महादेव?
19: तुम अपने क्रोध को उद्देश्य दो पुत्र।
0: उद्देश्य? वो कैसे महादेव?
19: पुत्र, अभी से अपने क्रोध को दिशा दो, और वो दिशा है असुरों के विरुद्ध, बुराई के विरुद्ध। तुम्हें ज्ञात है पुत्र किस प्रकार असुर देवों और देवलोक पर आक्रमण करते रहते हैं। तुम अपने आप को तैयार करो और देवों की सेना के सेनापति बनो, उनकी रक्षा करो। बोलो, कर पाओगे?
0: अवश्य महादेव, मैं वचन देता हूँ आपको।
2: मुझे तुम पर अभिमान है पुत्र।
0: पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, आप बालपन से ही मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे, और मैं हूँ कि किंतु आज महादेव और मेरे मित्र कार्तिकेय ने मुझे समझा दिया है। पिताश्री, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं समस्त देवगणों की रक्षा करूंगा, अपने क्रोध को सही दिशा दूंगा। मैं वचन देता हूँ पिताश्री।
14: देखो, तुम लोग यंग हो, बहुत समझदार हो, तो फिर तुम लोग ये मारपीट क्यों कर रहे थे?
12: हम उसे बताना चाहते थे कि हमसे पंगा ना ले।
14: हाँ, पर बात करके भी तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है ना। अच्छा चलो, ये बताओ, इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचा है तुमने? अपने गुस्से को कहाँ चैनलाइज करोगे?
12: पहले तो मैं ऋषि को सॉरी बोलूंगा, मारना नहीं चाहिए था उसे। फिर बची हुई एनर्जी से अपनी गर्लफ्रेंड को मनाऊंगा, वो शायद मानने में टाइम लगाए, फिर भी अगर कुछ एनर्जी बच गई तो सोच रहा हूँ आर्मी ज्वाइन कर लूं।
14: आर्मी क्यों? ओह, क्योंकि कार्तिकेय ने की इसलिए? अरे, सारी शक्ति सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं दिखानी होती, हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनसे लड़ने की जरूरत है, कई प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। अगर सच में अपनी एनर्जी और गुस्से को चैनलाइज करना चाहते हो तो अपने आप से प्रॉमिस करो, लोगों को यूनाइट करो, एक मुहिम चलाओ, पूरा शहर, सारी सड़कें और देश लड़कियों के लिए सेफ बनाओ।
3: आप सही कह रहे हैं, पर ये ऋषि को पीट कर हमने जो रायता फैलाया उसका क्या करें?
14: उस रायते को साफ कर दो और क्या।
12: हाँ भाई, रुको, मैं अभी ऋषि को कॉल लगाता हूँ।
14: गुड, और मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा।
3: अरे कहाँ जा रहे हो भाई?
14: मैं एक रोड ट्रिप पर हूँ दोस्त, अमरनाथ जा रहा हूँ। तुम लोग भी कभी प्लान बनाओ और साथ में आ जाओ वहाँ।
12: अगली छुट्टियों में पक्का आएंगे दोस्त।
14: पक्का। हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
11: ऊर्जा अमूल्य है,

0: तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87 894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। पोषण जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने किया रवाना। फैलेरिया मरीजों की अब रात के अंधेरे में होगी तलाश। अवैध क्लिनिक पर प्रशासन का छापा। बाल श्रम के विरुद्ध भी पुलिस ने की छापेमारी, दो बाल श्रमिक विमुक्त। प्रेमिका से मिलने गए रात में एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों की कराई शादी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आज जिले में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी समीर सौरभ ने पोषण रथ एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा निर्मित पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य पोषण संबंधित व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस वर्ष पोषण माह का मुख्य विषय हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं गर्म पका भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल विकास हेतु पोषण में प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृ स्वामित्व जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी समीर सौरभ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
7: जो है राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है, नवा राष्ट्रीय माह। इसमें 5 विभिन्न थीम है, इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है कैसे बच्चे और जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पे कैसे जोर दिया जाएगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। विभिन्न गतिविधियाँ हम लोग पूरे महीने भर चलाएंगे, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्सव की तरह हम लोग मनाएंगे, और सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और इसको अच्छा कार्यक्रम।
6: फाइलेरिया के छिपे संक्रमण की पहचान के लिए अब जिले में रात के अंधेरे में रक्त की बूंदों से बीमारी की तलाश की जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुचायकोट प्रखंड को छोड़कर जिले के सभी 13 प्रखंडों में नाइट ब्लड सर्वे आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक अस्थायी और 2 अस्थायी साइट चिन्हित की जाएगी, जहाँ रात के समय रक्त के नमूने लिए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के रक्त की जांच होगी। रक्त संग्रह का काम रात 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे से पहले चयनित स्थलों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार कराने तथा समुदाय को फाइलेरिया से बचाने और उपचार से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। बैकुंठपुर के मीरा टोला में एक अवैध क्लिनिक पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी को शिकायत मिली थी और जनता दरबार में मिली शिकायत के बाद उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह को यहां जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अवैध क्लिनिक में छापेमारी कर औचक रूप से जाँच किया, जहाँ स्थित डॉक्टर भी बिना पंजीकृत पाए गए। साथ ही वहाँ मेडिकल दुकान का भी संचालन हो रहा था, उसके भी कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद वहां के डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही क्लिनिक और वहां के स्वास्थ्य केंद्र को सील किया गया है और इसमें आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि उस क्लिनिक में भर्ती एक महिला मरीज को आईवी के जरिए दवा दिया जा रहा था। महिला मरीज को भी वहां से पीएससी बैकुंठपुर में ट्रांसफर किया गया और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम के विरुद्ध भी आज अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के मौनिया चौक स्थित एसएस होटल और कररिया स्थित सन्नी आयरन रिपेयरिंग सेंटर में श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी की। दोनों जगहों से एक एक बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, साथ ही नियोजकों के खिलाफ अब FIR दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा पंचायत के पनशाला बंगरा गांव में देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद सुबह पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों की रजामंदी से बगल के काली मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। युवक की पहचान हेमू छपरा गांव निवासी हरेंद्र दास का पुत्र रूपेश कुमार बताया जा रहा है, जबकि युवती की पहचान बंगरा गांव के ही निवासी विसुंदेव दास की पुत्री अमृता कुमारी है। दोनों के परिजनों ने रजामंदी से दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दुल्हन प्रेमी के साथ उसके घर चली गई। बताया जा रहा है कि अमृता के घर से करीब 200 मीटर उत्तर रूपेश बाइक गैरेज चलाता है और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। देर रात रूपेश अमृता से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सुबह पंचायत बुलाई गई और दोनों की सहमति के बाद काली मंदिर में दोनों का विवाह कराया गया। इस दौरान सरपंच पति शंभु शर्मा, उप मुखिया पति गुड्डू सिंह, वार्ड सदस्य संजय शाह समेत तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे और इसका एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़े गए 11 लोगों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा। इसमें शराब की तस्करी और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट तथा हत्या के प्रयास में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज बलथरी चेक पोस्ट पर एक लग्जरी बस से 63 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को जब्त किया और उत्पाद पुलिस की इस कार्रवाई में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी आकाश सिंह बस का चालक है। यह राजस्थान के पाली जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा सह चालक सोने राम शर्मा मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। तीसरा सनी कुमार खलासी कन्नौज का निवासी है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब और बस को जब्त करने के बाद अब तीनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हथुआ थाना क्षेत्र में 22 लीटर देशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जापुर के पास की, जहां से एक स्कूटी से 22 लीटर शराब मिली। इस मामले में आरोपी सोनू कुमार पिता मुन्ना राजभर साकिन लकड़ी देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी है और दूसरा एक महिला है। दोनों को गिरफ्तार कर अब दोनों पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इनकी स्कूटी और शराब को जब्त किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने माधो मठ में पूर्व के पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट की घटना में कार्रवाई की है। तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए घायल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया और महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी कर एक आरोपी अमन राम उर्फ अमन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह थावे के भेड़िया का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण पुलिस ने प्रथम दृष्टिया बताया कि पीड़ित द्वारा अभियुक्त को 30,000 रुपए दिए गए थे। उक्त राशि वापस मांगे जाने पर पीड़ित द्वारा अभियुक्त से संपर्क किया गया, जिस पर अभियुक्तों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। इसके बाद पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसमें आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर श्रीरामपुर गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सनोज कुमार पिता कृष्णा ठाकुर साकिन श्रीरामपुर थाना माझा का निवासी है। इसके घर तलाशी लेने पर एक लाल रंग के प्लास्टिक के थैले में सफेद पुड़िया में 20 पुड़िया गांजा जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने जब्त किया है और इस मामले में 3 चाकू भी आरोपी के घर से बरामद किए गए हैं। अब चाकू और गांजा को जब्त कर पुलिस ने आरोपी सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सदर अस्पताल में गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मी ड्यूटी से गायब मिले, जिनसे सो कॉज मांगा गया है। साथ ही संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि अचानक इमरजेंसी और आईसीयू की व्यवस्था की जांच करने के लिए सिविल सर्जन मोहम्मद इजराइल पहुंचे। एक एक बिंदुओं पर उन्होंने जांच की, जिसमें कई कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर अब विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 12 तारीख को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। हालांकि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अभी से ही स्टॉल लगा दिए गए हैं। अगर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के यहाँ किसी तरह का चालान से संबंधित वाद है तो आप अभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पोषण जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने किया रवाना। फैलेरिया मरीजों की अब रात के अंधेरे में होगी तलाश। अवैध क्लिनिक पर प्रशासन का छापा। बाल श्रम के विरुद्ध भी पुलिस ने की छापेमारी, 2 बाल श्रमिक विमुक्त। प्रेमिका से मिलने गए रात में एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों की कराई शादी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
16: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
15: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
18: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
15: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
18: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
15: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
18: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
15: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
19: 18th July 1982, जमशेदपुर बिहार में डॉक्टर अशोक और डॉक्टर मधु चोपड़ा के घर एक बेटी पैदा हुई। दोनों बड़े ही खुश थे। पेरेंट्स की जॉब के कारण इस लड़की का बचपन दिल्ली, पुणे, लखनऊ, बरेली, लद्दाख, चंडीगढ़ और अंबाला जैसे शहरों में बीता और धीरे धीरे US में अपनी आंटी के पास रहकर पढ़ रही ये सेमी हुई चुपचाप सी रहने वाली लड़की मॉडलिंग के दुनिया में आई और एक ही साल में पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा गई, मिस वर्ल्ड बन गई। बॉलीवुड भी इनकी पहली झलक से ही इनका दीवाना बन गया था। सिर्फ एक दशक में ही ये लड़की मॉडल से मिस वर्ल्ड और इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनने के अलावा आज ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशन भी है। ये है मेरी कहानी में हमारी आज की मेहमान है प्रियंका चोपड़ा।
20: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी। मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्टल भी भेज दिया था एक बार व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप मुझे बोलो कुछ करने के लिए मैं हमेशा बोलती थी नहीं, क्यों, मैं नहीं करूँगी, क्यों करूँ, मतलब विदाउट अ कॉज। मैं हमेशा रिबेलियन है, रिबेल विदाउट अ कॉज, मैं मतलब ऑलवेज कॉल मिला है, जिसका कोई रीजन नहीं होगा, बस तुम्हें रिबेलियन है, क्यों भाई, व्हाई कांट यू जस्ट गो विद। सो व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड, खाना खा लो, नहीं खाना, प्लीज आज खाना मत खाना, क्यों नहीं खाना, रिवर्स साइकोलॉजी शी यूज्ड टू यूज ऑन मी एंड शी सेंट मी टू डिसिप्लिन स्कूल 3 साल के लिए। उसके बाद मैं ठीक होके आ गई, थोड़ा दिमाग यूज करने लगी, बट आई वाज ऑलवेज वेरी जिद्दी। डैड ना और मेरी रिलेशनशिप थोड़ी स्पेशल है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था ना, तब मैं अपने पापा के पास जाती थी। डिसिप्लिन मेरी माँ मुझे करती थी, माय पेरेंट्स नेवर हिट मी। एक बार मैंने दूध गिराया था तो मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा था। एक बार मैं इंजेक्शन नहीं ले रही थी, मुझे टाइफाइड था तो मेरे पापा ने थप्पड़ मारा था, बट दैट्स ऑल। एंड एक बार जियोग्राफी, आई यूज्ड टू हेट जियोग्राफी, तो वो मैं पढ़ नहीं रही थी और मैंने बोला मुझे क्या, किसने सीखना, मैप थोड़ी ना बनाऊंगी बड़े होके, क्या जरूरत है ज्योग्राफी सीखने, किसको जरूरत है जानने की कि क्या व्हाट इज द शेप ऑफ अ हिल, मतलब वो एक्ट में कल एग्जाम में पढ़ो. बट बिसाइड्स दैट नहीं, मारती मैं थी अपने भाई को बहुत ज्यादा, सेल्फ कन्फेस्ड बुली बहुत मारती.
19: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में.
20: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी.
19: कहानी है.
20: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी.
19: प्रियंका चोपड़ा भले ही एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गई हो, पर अपनी फैमिली के लिए वो आज भी सिर्फ एक बहन, भतीजी, भांजी, पोती और बेटी है. आइए जानते हैं बचपन से अब तक रही उनकी यूनिक फैमिली इक्वेशन के बारे में.
20: माय ब्रदर्स आर वेरी इविल. एक तो मेरे पास यू नो मेरे सारे कजन ब्रदर्स एंड मी वी आर वेरी वेरी क्लोज. सो आई हैव 11 ब्रदर्स एंड वो बहुत इविल हैं. वी आर लाइक वी आर वेरी टाइट फैमिली. चाचाज के बच्चे, मासीज के बच्चे भी, बिकॉज आई लिव्ड विद देम, दे हैव लिव्ड विद अस. सो एवरी समर वेकेशंस वी यूज्ड टू गो टू ईच अदर्स हाउसेस एंड लिव. तो दे आर लाइक रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी. तो जब भी मैं आई नेवर स्लीप इन फ्रंट ऑफ देम. हर बार अगर मैं सो गई हूँ, और हम लोग सब अभी भी, मैं एक शादी के लिए गई थी अबाउट 2 months अगो, वन ऑफ माई कजन्स वाज़ गेटिंग मैरिड एंड एवरीबडी वाज़ एज यूजुअल हैंगिंग आउट इन माई रूम. एंड मैं 3 बज गए थे रात के एंड आई फ्लू इन टू अमेरिका जस्ट फॉर 2 दिन के लिए. तो जेट लैग, ये वो, थकी हुई थी, सो गई. व्हेन आई वोक अप देयर वर ऑफुल फोटोज. किसी ने नीचे मेरे पैर पे लिख दिया था आई लव भैया, किसी ने मूंछ बना दी थी, किसी ने लाइक यू नो शेविंग क्रीम होता है वो फेस पे आईब्रोज की जगह लगा दिया था. दे आर इविल माई सिबलिंग्स एंड सारे ऐसे फोटोज. मैंने बस बैग किया उनको ट्विटर पे मत डालो. थैंकफुली दे डिडंट पुट इट ऑन ट्विटर. फैमिली मुझे एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे मैं पहले थी, क्योंकि मैं उनको एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रीट करती हूँ जैसे मैं पहले थी. जो जैसे अगर कोई इंजीनियर है वैसे मैं एक एक्टर हूँ. मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा बाहर जाती है. व्हेनेवर आई डू इवेंट्स इन अमेरिका, मेरी मम्मी के साइड की फैमिली पूरी वहां पे. व्हेनेवर आई डू लाइक आईफा हो गया या किसी इवेंट के लिए गई, मेरे पूरा खानदान आता है. आई एम टेलिंग यू, नेशनल अवार्ड जब मुझे मिला था इट वाज सो एंबैरस्ड. आई डिसओन्ड माय फैमिली क्योंकि एक तो वो प्रतिभा पाटिल जी इतनी छोटी सी है ना, मुझे तो पूरा टाइम इमेजिन नहीं मेरे सामने है, मैं हील्स में. तो मुझे लग रहा था कि अभी मैं गिरूंगी और साड़ी के ऊपर ट्रिप करूंगी और उनके ऊपर गिरूंगी. ये मेरा इमेजरी थी पूरी रात. आई कुडंट स्लीप. और आई थिंक कंगना वाज आल्सो देयर दैट ईयर विद मी एंड अ लॉट ऑफ अदर. सबके अवार्ड्स हो रहे थे, वो लोग जा रहे थे, एवरीबडी वाज क्लैपिंग वेरी डिग्निफाइड. जैसे प्रियंका चोपड़ा बोला तो होल हॉल शुक एट 37 पीपल विद फैमिली, दादी, नानी, चाचा, चाची, कजिन्स, बुआ, मासी, एवरीवन. और मैंने बोला फैंस में क्या करूं, आई डोंट नो दीस पीपल. इट वाज सो एम्बैरेसिंग. सो माय आई कैरी माय फैमिली एवरीवेयर. जब मैं शूटिंग पे मनाली वगैरह जाती हूँ, सो माय फैमिली फ्रॉम अंबाला, दिल्ली, आई फ्लाई देम डाउन, आई कीप देम विद मी.
19: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में.
20: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
6: अरे माँ,

0: उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30-92 या 9765-65750।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: कहानी के हमेरी कहानी,
6: ये कहानी है।
7: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी।
6: अपनी टीनेज में प्रियंका सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। तो आइए अब जानते हैं कि घर से निकली ये सिंपल सी टीनेजर धीरे धीरे कैसे मॉडलिंग की दुनिया में आई और कैसे इसने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई।
7: अमीरो, I was a kid. I was 17 when I started modeling. तो जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, मधु सप्रे and like नोयना and भावना and all these big models used to be there and मिलिंद सोमन और सबको देख के मैं तो ऐसे चकाचौंध हो गई थी, because you remember there was a phase when models used to do videos. And they had become like really popular. So, you know, I was like, oh my God. And I was very into music that time. You know, I was like a teenager, 15, 16. Na? So that time, Made in India, Alisha Chinoy, and like all the songs are just Shibani. So I was like starstruck. Man, I'm walking the ramp with these guys and it's so cool. So they all also, I was invisible at that time because, I mean, I was a kid. So I used to just watch them and be, so I was never popular or not popular. They used to treat me like some child was walking around, like Lara and all, they modeled for years. And I was like some 17-year-old who was like tripping on her sari. You know, Hemant had to, Trivedi, he had to teach me how to walk with heels. So it was another phase where I was like a kid in a china, in a kid in a toy shop. I was like that. Friendly person, I like people, I enjoy people, so I did make a lot of friends, but it was never like the networking sort, the people I needed to know. You say, you know, like in the movie business, jab main filmon mein aayi na, to I thought that everybody became friends with somebody else agar unko kuch chahiye hota hai. And jab unka दौर अच्छा नहीं जा रहा होता तो वो दोस्ती खत्म हो जाए। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मेरा काम मेरे लिए बात करेगा, भैया तुम दोस्त हो ना हो। एंड आई वाज वेरी लकी, थैंकफुली आई रियलाइज दैट आई वाज गुड एट व्हाट आई डू एंड पीपल लाइक्ड माय वर्क एंड all my career, my work has spoken for itself. I've never been in any camp. I've never been friends with one type of people. I've never needed, by God's grace, to ask for work.
6: सुनते रहिए, ये है मेरी कहानी में।
7: Hi, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी।
5: कहानी ये है मेरी कहानी।
6: ये कहानी है।
7: Hi, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी।
6: प्रियंका की माने तो वो अपनी इनिशियल टीनेज में काफी बेडौल और शर्मीली सी थी। उनके जिन पैरों में कभी सफेद निशान हुआ करते थे, आज वही पैर देश की 12 सबसे बड़ी ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। क्या था प्रियंका का सक्सेस फॉर्मूला जो उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अपना लिया था?
7: फिल्म का तमिलियन विद विजय, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, बट अ फ्यू मंथ्स लेटर ओनली माय अंदाज केम एंड हीरो, व्हिच वाज दे ऑल केम सो क्लोज टू क्लोज दैट आई डोंट नो व्हिच वन टू से फर्स्ट। मैंने अपनी फिल्मों को कभी पैसों से नहीं तोला है। आई मेक माय मनी, ऑफ कोर्स आई मेक मनी, लेकिन मैं शोज करती हूँ, मैं एंडोर्समेंट्स करती हूँ, ऑल दैट फॉर मी इज द बिजनेस। मेरी फिल्म्स मेरे लिए बहुत वर्शिप की तरह होती है। आई वर्क वेरी हार्ड, सो यू नो आई गेट व्हाट आई डिजर्व, बट आई विल नेवर लीव अ फिल्म और डू अ फिल्म फॉर मनी। दूसरी बात, मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जहाँ छोटे रोल है मेरे। कमीने में मेरे सिर्फ 8 सीन, ओनली 8, यू कैन काउंट देम, 8 सीन्स, बट इट्स अबाउट, मैंने अमिताभ बच्चन का एक कोट पढ़ा था, पता नहीं कौन सी मैगजीन में था, मैंने जब फिल्में शुरू की थी उन्होंने कहा था कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी सीन्स यू हैव, इट्स व्हाट यू डू इन एवरी सीन व्हिच विल बी रिमेम्बर्ड। वो यू नो दैट स्टेड विद मी एज एन एक्टर। मैंने अपने सारे कॉलीग से बहुत कुछ सीखा।

0: एंड दिस वॉज अ बिग लेसन. तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू इनकॉन्सिक्वेंशियल पार्ट्स जहां पे आपके पास कुछ नहीं हो करने के लिए. अगर मुझे किसी और हीरोइन से एक्सचेंज कर दिया जाए तो तभी भी वो पार्ट वैसा ही रहेगा. वो वाले रोल्स नहीं करने मुझे. अपने हुनर को शार्पन करो और उस पे काम करो ना. देन नो वन कैन डिनाई टैलेंट, नो वन कैन डिनाई हार्ड वर्क. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट. सो आई रियलाइज आई हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अलोंग द वे, बट दैट्स बिकॉज ऑफ मी, हु आई एम एंड हु दे आर. इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप. देयर इज नो नीड इन द मिडल ऑफ इट. आई डोंट एक्सपेक्ट माई फ्रेंड्स टू मेक फिल्म्स फॉर मी. दे डोंट एक्सपेक्ट दैट आई शुड स्टार इन एवरी फिल्म ऑफ देयर्स. देयर इज नथिंग लाइक दैट. प्रोफेशनली आई विल बी सपोर्टिव ऑलवेज, दे विल बी सपोर्टिव ऑलवेज. इफ वी एंड अप वर्किंग टुगेदर ग्रेट, इफ वी डोंट दैट्स फाइन टू. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट जैसे मैं हर फिल्म जब करती हूँ मेरे दोस्त बनते हैं. वी गो ऑफ टू द नेक्स्ट फिल्म, वी स्टे इन टच, वी डोंट स्टे इन टच. देयर इज नेवर एन ऑब्लिगेशन. एंड आई थिंक दोस्ती में वो सबसे जरूरी बात होती है. दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर कंटेंट. अपने जहन में, अपने सर में आपको खुश होना चाहिए कि यार आई एम डूइंग गुड वर्क. देन यू डोंट नीड एनीबडी.
1: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में.
0: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी.

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: कहानी है।
10: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी।
9: अपने काम के साथ प्रियंका ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो न सिर्फ चूजी हैं पर काफी डेडिकेटेड भी हैं। आइए जानते हैं कि वो सिंगिंग से लेकर एक्टिंग तक और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड असाइनमेंट्स तक सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे करती हैं। साथ ही उनसे जानते हैं उनकी यूनिक चॉइसेस के बारे में।
10: आई डोंट लाइक मीडियोक्रिटी, आई डोंट लाइक इनएफिशिएंसी। मेरी टीम में भी आई एम अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर विद माय टीम। मैं आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देती हूं, मैं 36 चीजें एक साथ करती हूं। आई एक्सपेक्टेड टू बी डन। व्हेन इट कम्स टू माय वर्क, कोई भी मेरे वर्क में ना बाधा डाले तो मैं गला काट दूं। मेरे वैन गंदा हो, चाय मिल रही हो, कॉफी ना, ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर टू मी। लेकिन मेरा स्क्रिप्ट मेरे सामने होना चाहिए व्हेन आई कम इनटू द वैन, सो दैट व्हाइल आई एम डूइंग मेकअप आई कैन रीड इट, आई एम प्रेप फॉर माय सीन, लिटिल थिंग्स लाइक दिस। जब मैं सेट पर जा रही हूँ तो यू नो टचअप्स के लिए अपने आप आओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रखो, जो मेकअप करता है आप देखो, सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मेकअप एंड हेयर। तो ये चीजों के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। किसने कहा कि मैं नॉर्मल हूँ? आई एम वेरी यूनिक, आई एम नॉट एट ऑल नॉर्मल। आई डोंट लाइक डूइंग दैट थिंग्स आर नॉर्मल बिकॉज आई थिंक इट्स बोरिंग। आप तभी स्पेशल हो सकते हो जब आप नॉर्मल से दूर जाओ। नॉर्मल बहुत आसान है, नॉर्मल सेफ है, एंड सेफ इज नॉट फन समटाइम्स। मैं अपने आप को एक एंटरटेनर समझती हूँ और अपने आप को री इन्वेंट करना और या अलग अलग चीजें करना, दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाती हूँ सेम चीज कर करके। आई हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो एक्साइटिंग चीजें होती हैं तब मैं एक्साइटिंग चीजें करती हूँ। आई एम अ ट्राउट, आई स्विम अगेंस्ट द करंट। कहानी some of our films do well, some don't. You've seen Alia do Highway, you see Deepika do Fanny, you've seen Sonam do Khoobsurat. You know, it's great to see actresses now aise, you know, coming into their own, jahan pe wo alag alag kism ki filmein karne ki koshish bhi kar rahe hain, and wo daur bahut acha hai. I hope ki, you know, log filmein dekhein. Jab log kisi film ko dekhne jaate hain, I hope India mein aisa waqt aaye jahan pe wo film dekhein ye keh ke ki yaar ye achhi film hogi, na ki ki ye woman oriented hai ya isme hero hai. Woman oriented, my aim is ki jab log film isliye film dekhein kyunki film achhi lage, chahe usme male protagonist ho ya female protagonist.
9: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में.
10: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी.
0: कहानी ये है मेरी कहानी.
9: ये कहानी है.
10: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और ये है मेरी कहानी.
9: हस्ती मुस्कुराती प्रियंका अंदर ही अंदर अकेलेपन से जूझ रही हैं और अपने पिता के गुजर जाने के सदमे से अब तक उबर नहीं पाई. आइए अब जाते जाते जानते हैं उनके इस फेज के बारे में और उनकी अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से उनकी ट्यूनिंग के बारे में.
10: Four days after my dad died, I started shooting for Maricom, and I just worked. I have not stopped since. So, मेरे लिए, I think मेरा support when it comes to my father was just my work. For me, it was a very solitary journey. मेरी मॉम और मेरे लिए दोनों के लिए. She's dealt with it much better than I have. Okay. I haven't even started dealing with it. मैं तो सोचती नहीं उसके बारे में. I still feel sometimes if मैं घर जाऊंगी तो you know he'll just pop out from somewhere and make a joke. He used to always ask me every day कि आज कैसा दिन गया. उसके हिसाब से मैं ग्लास निकालूंगा या बॉटल ऑफ वाइन. So he was that kind of guy, you know. So I still feel that. For me, my work was my strength, my support. It's a very lonely, solid. It's something I can only do with myself. किसी और की help से या बात करने से, I don't believe in all that. Though my mother disagrees, she talks to her family, my dad's side of the family, her friends. But मेरे लिए, I don't like anybody intruding between me and my father. People just don't understand Sanjay sir. I've had an incredible working experience with him. I'm a huge fan of his work. But more than that, as a person, he's so sensitive. He's so gentle. He just needs things done. And if agar aapke aas pass mediocrity hogi, agar aap instructions de rahe ho kisi ko aur wo follow nahi kar paaye, and you're making a film jiska budget 150 crore hai, there's so much riding on you. Anybody is bound to get pissed off. And har insaan ka tarika hota hai. I'm not agreeing or disagreeing with anybody. Mera jo personal relationship raha hai, main Sanjay ke sir ke saath ek gaana kiya hai, and ek film ki hai where he's produced the film. I've spent so much time with him, so many evenings with him, baate karna, dinner pe jana, just hanging out with him. He's such a gentle, sensitive man. So I'm exactly like that. So I understand. And I really believe ki filmon ko pyar mohabbat se hi banana chahiye.
9: Zameen se aasman ki bulandiyon tak pahunchne ki kahani. Kahani. किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की. ऐसी ही कहानियां करेंगी आपका इंतजार, तो सुनना ना भूलें.

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।

0: 72 is a director, writer, producer and actor whose work has redefined Hindi cinema. His journey began as a co-writer for Ram Gopal Varma, Satya, Panch and Black Friday.
1: और श्रोताओं, आज के आज सवेरे में बस इतना ही. उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी.
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
1: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी. भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया. भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए. राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा. मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया. और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है. इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा.
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन. ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा. कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो. तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं. इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के. 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है.
2: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है. इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल हैं. इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है.
3: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा. और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
2: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
7: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
8: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
9: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
10: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दांव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
13: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
14: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
14: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
15: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
16: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
15: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
16: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
15: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
17: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
13: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
14: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
18: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ। भूल जाओ मुझे,
19: याद करोगी मुझे?
18: जब जब बारिश होगी तब

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपाल।

0: बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट।

0: में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
0: मुरारीलाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गया और सारण जिले में पर्यटन विकास की 3 योजनाओं को दी मंजूरी। योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए AI का किया जाएगा उपयोग। गंगा, पुनपुन, सोन, कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही है कमी। 14 प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में मामूली सुधार। और शिक्षा विभाग ने 26 जिलों में अधिशेष शिक्षकों के सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण की सूची जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास की 3 योजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। स्वदेश दर्शन योजना 2 के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र के निर्माण के लिए 166 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बिहार पर्यटन विकास निगम को दी गई है। इसके साथ ही सारण जिले के सोनपुर मेला क्षेत्र विकास के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी जिले के प्रसाद योजना के तहत अंबिका भवानी मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग किया जाएगा। मंत्री ने राज्य स्वास्थ्य समिति में पेशेंट रेफरल सिस्टम और टेलीमेडिसिन सेवाओं की समीक्षा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के एकीकरण, अस्पतालों में बेड की रियल टाइम उपलब्धता और तकनीक आधारित त्वरित रेफरल व्यवस्था विकसित की जा रही है। श्री निशांत ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत PMCH, पटना एम्स, NMCH और IGIMS को जोड़ा जाएगा। एम्बुलेंस से मरीज की स्थिति और लोकेशन की जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाई जाएगी, जिससे बेड की उपलब्धता और मरीज की स्थिति के आधार पर उपयुक्त अस्पताल का चयन किया जा सके। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि

खरीफ मौसम 2026 फसल सहायता योजना के लिए किसान 31 अक्टूबर तक निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अब तक करीब 73,000 किसान आवेदन कर चुके हैं। फसल क्षति होने पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसान ई सहकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-80% तक अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान किसी भी सहायता के लिए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-3454-110 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हरियाणा के लिए नियमित बस सेवा शुरू करेगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि निगम ने बसों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच जुलाई में हुए समझौते के तहत बिहार के 12 प्रमुख मार्गों से एसी डीलक्स बसें हरियाणा के अंबाला, गुरुग्राम और पानीपत जैसे शहरों के लिए चलाई जाएंगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और मधुबनी समेत प्रमुख शहरों को इस सेवा से जोड़ा जाएगा। श्री रावत ने बताया कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। इससे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले राज्य के निवासियों को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। राज्य में भवन से भूमि तक के कारोबार के नियम अब सरल होंगे। पटना में कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक और राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त बैठक में बिहार बिल्डिंग बायलाज 2026 के प्रारूप पर चर्चा की। बैठक में प्रशासनिक नियमों को सरल बनाने और कारोबार को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे डी रेगुलेशन 1 और 2 की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके तहत कम जोखिम वाले भवनों के लिए स्वप्रमाणन और मध्यम जोखिम वाले भवनों के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि खाद्य सुरक्षा को लेकर इस दौरान विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। दूध और दुग्ध उत्पाद, मिठाई, खाद्य तेल, मसाले सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। श्री रवि ने अधिकारियों को होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी निरीक्षण कार्य और कार्रवाई की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली FOSOCOS पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने को कहा है। प्रदेश के 26 जिलों में अधिशेष शिक्षकों के सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण की सूची शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। पटना समेत शेष 12 जिलों की सूची जल्द जारी की जाएगी। विभाग के अनुसार सरप्लस शिक्षकों के 73,151 आवेदकों में से 42,000 से अधिक शिक्षकों को उनकी पसंद के विद्यालय मिले हैं। इनमें बड़ी संख्या महिला शिक्षकों की है। वहीं जिन शिक्षकों को पहली पसंद का विद्यालय नहीं मिल सका उन्हें अन्य विकल्पों में शामिल विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया है। सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी और 31 अक्टूबर तक सभी मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDIA ने ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम में आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और चेहरे के सत्यापन के लिए सैंड बॉक्स जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये नए टूल बैंकों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संगठनों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आधार चेहरे के सत्यापन को आसानी से जांच करने में मदद करेंगे। ये किट एक सुरक्षित सिंगल ऐप ऑथेंटिकेशन अनुभव देगा, जबकि सैंडबॉक्स पहले फेस कैप्चर, लाइवनेस चेक, सत्यापन और अलग अलग तरह की स्थितियों में जांच करने की सुविधा देगा। उम्मीद है कि इस किट से आधार आधारित सत्यापन आसान हो जाएगा और उपयोगकर्ताओं को कई एप्लीकेशन की जरूरत कम हो जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गंगा, पुनपुन, सोन, कोसी समेत अन्य छोटी बड़ी नदियों में आई बाढ़ से प्रदेश के 14 जिलों के निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ग्रामीण कार्य विभाग के मुताबिक पटना, वैशाली, सारण, भागलपुर, भोजपुर और बेगूसराय जिले में ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 14 छोटे बांध अब तक टूट चुके हैं। प्रदेश भर में लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के डूब जाने से यातायात प्रभावित है। 100 से अधिक सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि सड़कों पर निरंतर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। सबसे ज्यादा तबाही गंगा के तटवर्ती जिलों के दियारा क्षेत्रों में हुई है, जहां बाढ़ से घिरे लोगों ने अपना घर छोड़ बांध या अन्य ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब धीरे धीरे पानी निकल रहा है। लोगों ने राहत महसूस की है। हालांकि गंगा, सोन और पुनपुन नदी की बाढ़ से जिले की एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। एक रिपोर्ट।
1: बाढ़ से ग्रामीण इलाकों में कई घर ध्वस्त हो गए हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। 10,000 से अधिक की आबादी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए है। बड़े पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ निर्माण विभाग की 20 किलोमीटर लंबाई तक 16 सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इनमें अधिकतर सड़कें पटना सिटी, फतुहा, मसौढ़ी, पुनपुन, मनेर, बैरिया, मौजीपुर और दौलतपुर के क्षेत्र की हैं। कई अन्य संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। जिले में करीब 90 स्कूल पानी से घिरे होने के कारण यहां पठन पाठन और परीक्षा बाधित हो गई है। 11 प्रखंडों में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का और सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के साथ ही नुकसान के आकलन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: प्रदेश के बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में पठन पाठन कार्य में हुए नुकसान के आकलन रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में विभाग के विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार ने जिलों में प्रभावित विद्यालयों की संख्या और नुकसान का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बाढ़ के कारण बंद विद्यालयों के शिक्षकों को राहत शिविरों में रह रहे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तत्काल प्रतिनियुक्त किया जाए। प्रदेश के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, गया, नवादा, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना है।
2: 10 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज एवं नवादा जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया, रोहतास और भोजपुर जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक गया के शेरघाटी में 90 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना तोरौना भोजपुर पंचायत की है। मृतकों में 2 सगे भाई और उनके चाचा शामिल हैं। अब खबरें खेल की। 33वीं राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 16 सितंबर तक किया जाएगा। पुरुष वर्ग के मुकाबले समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 13 और 14 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि महिला वर्ग का मुकाबला 15 और 16 सितंबर को मोतिहारी में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने दी है। राज्य के उद्यमान क्रिकेट खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए पटना में अक्टूबर माह में आयोजित होने वाली भरलो उड़ान स्कूल क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। आईपीएल की तर्ज पर होने वाली इस प्रतियोगिता में अंडर 12 और अंडर 15 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। औरंगाबाद जिले के रफीगंज रेलवे स्टेशन के करीब 2002 में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना की बरसी के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आज मध्य रात्रि में ही दुर्घटना स्थल के करीब रेल कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने पूजा अर्चना की और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली चौक इलाके से मुंबई पुलिस ने ठगी के आरोपी मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति पर खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने का आरोप है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी, आधी आबादी के सम्मान से जुड़े फैसले से समझौता नहीं। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भवन बनाने के लिए घटेगी कागजी दौड़, बिल्डिंग बायलॉज का प्रारूप हुआ तैयार। दैनिक भास्कर लिखता है, भारतीय डाक विभाग नया सिस्टम लाया, 10 अंकों के डीजी पिन से होगी हर जगह की सटीक पहचान। प्रभात खबर की विशेष खबर है, 9 देश अपनाएंगे बिहार जीविका का मॉडल, जीविका दीदियों को दिए गए लोन की रिकवरी 98.6% रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गया और सारण जिले में पर्यटन विकास की 3 योजनाओं को दी मंजूरी, योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए AI का किया जाएगा उपयोग। गंगा पुनपुन सोन कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही है कमी, 14 प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में मामूली सुधार। और शिक्षा विभाग ने 26 जिलों में अधिशेष शिक्षकों का सामान्य और पारस्परिक स्थानांतरण की सूची जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up.
2: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हां, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
3: हेलो
4: हेलो मैम, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90।
4: जी मैम, कैसे हैं?
3: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
4: जी हम भी अच्छे हैं मनोरमा मैम।
3: जी जी,
4: क्या बात है, आज भी आपसे बात हो गई।
3: जी
4: बहुत खुशी हुई, कॉल लग गया मेरा।
3: जी लेकिन एक बात बता दूँ आपको, आप सरदो की बोल रहे हैं?
4: जी मैम।
3: तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ।
4: जी बोलिए मैम।
3: जी आप तो बहुत मुश्किल से फर्स्ट बार कॉल करते हैं, लेकिन जब हम कॉल बजाने जाते हैं तो आपका कॉल पीछे हो जाता है।
4: जी मैम, हम दो दिन मतलब इंतजार किए तब कॉल बजा था।
3: जी जी हाँ, तो हम बोले कि आप फर्स्ट बार ही कॉल करते हैं, तो क्या ना जब कॉल हम लोग निकालते ना तो इधर उधर हो जाता है, तो इसकी वजह से लेट हो जाता।
4: मैम नहीं, एक बार और किए थे लेकिन लास्ट में तो बातें में बोली थी कि बजेगा फर्स्ट में, लेकिन बजा नहीं।
3: अच्छा
4: बताइए, कितना कोशिश करके लगाते हैं एक नंबर में हम।
3: जी जी, अब इसमें हम लोग का ही कर सकते हैं बताइए, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ आप कहीं बजे, लेकिन जब हम लोग कॉल निकालते हैं ना इसमें से तो कॉल इधर उधर हो जाता है, इसके लिए आप नाराज तो नहीं है?
4: जी मैम नहीं, मतलब कहने वालों ने कहा है कोशिश फिर से करना चाहिए, फिर से कोशिश कीजिएगा मैम।
3: जी जी, कोशिश तो करके करेंगे,
4: इसके लिए हमको बहुत खुशी लगी। और मैम वो रानी जी है, बहुत लंबा बात कर रही थी।
3: जी जी,
4: उनका फरमाइश मतलब अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है हमको उनका फरमाइश, बातों के साथ फरमाइश भी रहता है। और वहाँ कहाँ का सुनील जी है, उनका भी अच्छा लगता है फरमाइश। मैम वो तो क्यों नहीं चल रहा है?
3: तो अभी इसलिए नहीं चल रहा है कि
4: मैम तो आ जाइए, आप भी चलाइए ना।
3: तो मैं तो चलाती, लेकिन अगर आप लोग इतना मुश्किल से कॉल कर रहे हैं लो ये नहीं बजेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, इसको भी तो बजाना जरूरी है।
4: एक बात है, ये सो तो इम्पोर्टेंट है, ये सो तो इम्पोर्टेंट है।
3: जी
4: हेलो माइक, हेलो मैम, तो मेरा नाम बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद की पहचान में। जी मैम, तो हमको इतिहास से गाना सुनाइए। संगीत है, गाना का नाम है चोरी चोरी।
3: क्या गा के बता सकते हैं?
4: गाना गाते नहीं इसलिए मेरा आवाज अच्छा नहीं, इसलिए।
3: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
4: कोई भी सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए
3: नहीं, नहीं। आपका आवाज अच्छा है इसीलिए तो बोले जाने के लिए।
4: नहीं आप तो सबसे बोलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है सुनते हैं, तो कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं, खासकर आपका कार्यक्रम आता है तो।
3: अच्छा जी,
4: क्योंकि हिंदी पिक्चर के वो है राधे मुखर्जी, उनका आवाज और आपका आवाज मिलता है।
3: ये बात है,
4: हर बहुत अच्छा लगता है हमको सुनने में। देखिए मैम, रेडियो हम तो इतना लगा रहे ना, हर कोई काम करके ये सुनते हैं पहले, तो बहुत ज्यादा आदत लग गया है मैं इसका।
3: चलिए बहुत अच्छी की बात है, जो गाना बताया है वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
4: हाँ डेडिकेट है आरो भारती फिल्म को और सभी रेडियो
3: दोस्तों,
4: जो हमारे पसंद करने वाले हैं गाना, सभी को, हर जो नहीं पसंद करेंगे उनको भी।
3: नहीं नहीं सब कोई पसंद करेगा, ऐसा हम थोड़ी है।
4: मैम बताइएगा गाना कैसा है?
3: गाना तो बहुत अच्छा है।
4: जी मैम, तो कोशिश कीजिएगा एक नंबर बजाने का।
3: जी जी,
4: और भी लोग लाइन में होंगे तब तक चलिए।
3: जी बाय, प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम 90.4 है ना।
1: थैंक यू
0: जी। चले अरुण जी,
1: बस ठीक है जी। आप लोग कैसे हैं?
0: हम लोग भी बढ़िया है। लो
1: जी, गाना सुन रहा है मैडम जी?
0: बता दीजिए।
1: आज आप कुछ पुकार मेरे मित्र मेरे मित्र मेरे मित्र। मैं गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: गोपालगंज में कहाँ?
1: गोपालगंज सारे वार्ड नंबर 2।
0: गाना का बोल एक बार और बता दीजिए।
1: आज आप कुछ पुकार मेरे मित्र मेरे मित्र मेरे मित्र।
0: और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
1: जी? पूरा अपना रेडियो जिनके जितना भी रोटागार है, जितने भी प्रेमी आदमी है, उन सबके लिए कर देना।
0: मित्र।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
7: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up.
12: pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हर वक्त हर लम्हे अजीब होते हैं, दुनिया में वो खुश नसीब होते हैं। हर वक्त हर लम्हे अजीब होते हैं, दुनिया में वो खुश नसीब होते हैं। दूर से तो हम इतना याद करते हैं उन्हें, दूर से हम इतना याद करते हैं उन्हें, क्या हाल होगा जब दोनों करीब होते हैं।
15: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
16: 90.4 FM में। मैं हूँ, कैसी है
15: जी? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
16: हाँ मैं भी अच्छा हूँ।
15: हाँ, और आपका?
16: मेरा तो हो गया, तो नाश्ता कर लेता हूँ और नाश्ता वास्ता हो गया है।
15: आपकी आवाज कट रही है।
16: आप सही है ना?
15: हाँ हाँ, आप सही आ रही है।
16: धूप थोड़ा है ज्यादा, आज दो दिन से बारिश हो रही थी बीच में, अभी नहीं हो रहा है, तो धूप है, हवा भी है, और समझिए अगर धीरे धीरे तो गर्मी जा ही रहा है, कुछ गर्मी अक्टूबर पड़ेगा।
15: जी जी।
16: और सब बढ़िया है?
15: जी सब बढ़िया है।
16: योर बोल तो चॉइस बंद हो गया क्या?
15: नहीं नहीं, चलेगा।
16: चलेगा
15: जी।
16: अच्छा अच्छा,
15: आज नहीं चलेगा, दो दिन बाद चलेगा।
16: अच्छा, दो दिन बाद चलेगा।
15: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से।
16: हाँ हमको पता है
15: जी,
16: और मैं रेल जीव का ध्यान रखता हूँ, खबर मिलता रहता है मुझे। हाँ तो भैया पुराना लिस्टर है, उनको हम चलेगा नहीं?
15: जी बिल्कुल।
16: आपको आज गाना सुना दीजिए, तीन मोहरा का टिप टिप बरसा पानी।
15: ओके।
16: डेडिकेट है मोहरा का टिप टिप बरसा पानी। डेडिकेट है सबसे पहले आपको आयशा अरमन सिद्दीकी, सोनिया परवीन, अख्तरी अहमद अली, सबीना सब्बा सिद्दीकी, रोशनी कुमारी, हेमा हजरा और निशा सुकुनवा, भास्कर भंजू, उमा शंकर, दिलीप राम, मुकेश, उत्तम सोनी, उमा शंकर और जितने लोग सुन रहे हैं, दिवेंद्र सिंह, जितने लोग सुन रहे हैं, समीर आलम, नाम हुसैन, सबको सुनवा दीजिएगा। नमस्कार।
15: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: मैम हम भी ठीक है मैम। तो आप सब बताइए कैसी हैं, क्या खाना वाना खा कर आई हैं कि नहीं?
1: जी जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और खाना भी हो गया। और आपने खाया?
0: जी मैम।
1: तो क्या करेंगे थे अभी आप?
0: जी मैम बैठे हैं, फोन लगा रहे थे। 41 बार लगाए हैं फोन, 11:00 तो बीच में छोड़ दिए, देखने लगे मोबाइल, लगता ही नहीं है।
1: हार नहीं मानती हूँ।
0: देखिए कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, गंगा नदी कभी पार नहीं होती।
1: जी जी बात तो बिल्कुल सही है।
0: कोशिश करिएगा तो एक मंजिल मिल जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अब मैम गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: अब राजा बाबू में के जो तीज नहीं करती थी वो अमर पाली, उसी में के गाना सुनना है मैम।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: मैम आपको की मैम को जितना तीज व्रत करती हैं सभी बहने और श्रोताओं को सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके जी, वैसे अपना नाम नहीं बताएंगे?
0: मैम हम हाजीपुर से बोल रहे हैं मैम, सुनीता देवी।
1: ओके जी, तो सबको घर परिवार में ठीक है?
0: जी मैम सभी ठीक है, बच्चा लोग पढ़ने चले गया है, लोग हम भी अकेले हैं, एक बजे आएगा लोग
1: पढ़ने। लिए खाना वाना तो रेडी होगा?
0: जी मैम अब रेडी करेंगे दोपहरिया का खाना।
1: जी जी ठीक है, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: Now pick your phone up. Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
9: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: नमस्ते मैम।
10: नमस्ते,
11: कैसी हैं?
10: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
11: मैं भी ठीक हूँ, आज तो खाना खा ली।
10: और आपने?
11: मैं भी खा ली।
10: वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
11: नवादा से।
10: कहाँ से?
11: नवादा से।
10: अच्छा, और आपका नाम?
11: प्रीति।
10: प्रीति
11: जी। प्रीति।
10: अच्छा, और बताइए।
11: और सब ठीक है। गाना सुना
10: बता दीजिए।
11: बता रही हूँ।

0: सॉन्ग।
1: जी जी आप तो बहुत अच्छा गा रही हैं।
0: जी थैंक यू मैम।
1: जी अब जो गाना बताई हैं आप, वो गाना किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: हाँ आपको, भारती मैम को, मेरी बहन सुरभि को, और मैम ये जो सॉन्ग है ना वो श्रेया घोषाल का है, न्यू वाला, वही बताइएगा।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम थैंक यू।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजीव 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम जी। बढ़िया, सुनिए अपन बताएंगे।
0: ठीक है,
1: कल क्या होता है? हाँ ठीक बानी।
0: हम अब ठीक बानी पहले से।
1: चलो पहले से आराम बानी।
0: हाँ जी, पहले से आराम बा।
1: चलो ठीक है, आराम बा। नाम बता दिया अपन।
0: रेशमा बोलते नहीं?
1: कहाँ से?
0: रेशमा बोलते हैं, पठान पड़ी।
1: पहचान
0: गई?
1: पहचाना तो बोल नहीं मैं, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी बात।
0: हाँ ये कहा सर, ये फिर जब पूछे तब ना सब कोई पूछे मालूम चले के कहाँ से जुड़ल बा ना। जी
1: सब लोग सुने ला ना।
0: सभी जुड़ रहे हम गाँव से जुड़े थी, रानी बाड़ी हर अपनों से बहुत बात कर ली। ज्यादा देर में बात होगा करेकॉर्डिया कर पठान पट्टी कैसे हो जाएगा प्यार से लड़ते लड़ते बासी में सुनी में जितना लोग रेडियो सुनता सब कोई सुनी। चली मैडम जी
1: ना
0: आए तब चली भाषा ना तो रोग का रिकॉर्ड करे बात
1: ही
0: ज्यादा लंबा टाइम है
1: ना? ना दो तीन दिन में चले
0: लगे
1: टाइम मिले तो वहीं स्टार्ट कर दें।
0: और टाइम मिले तो स्टार्ट करो बस एक बजे से।
1: चलिए फिर तो
0: ठीक
1: करते हैं।
0: ठीक
1: जी, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए।
8: के लिए पर और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार।
9: चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
16: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
17: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
18: राम राम साहु, गुना से।
17: जी कहाँ से?
18: मेरा नाम है चमेली
17: जी। और कहाँ से?
18: मैं हूँ मालनाल वेली, गुना से।
17: अच्छा, तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
18: एक गोटे डाल लेगा जब निकलू जब डाल।
17: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
18: सभी को सुनाना चाहे जी।
17: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
18: कब बजेगा ये गाना?
17: शाम को बजेगा, 5 से 7 के बीच।
18: ठीक है भाई।
17: ओके, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम। जी कैसे हैं आप?
1: मैडम जी खाना खा रहे हैं और आपसे बात चल रही है।
0: अच्छा तो और सब बताइए, आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
1: सब ठीक है, और सभी रेडियो सुनते हैं हमारे घर में।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छे की बात है। तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
1: आज की फरमाइश रहेगी, पिक्चर का नाम है हम तुम्हारे सनम, और इसमें गाना है गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई, तकिया और एक हम दो, एक ही रजाई, सर्दी कैसे जाएगी।
0: ओके, डेडिकेट भी है?
1: जी जी मैडम, सबसे पहले आपको है गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल चंदेल है, मांगीलाल धाकड़ है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है, इन सभी लोगों के लिए गाना डेडिकेट रहेगा, जितने भी रिमझिम सुन रहे हैं उनको भी रहेगा।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
2: गले में

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: राधे राधे।
7: राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
8: गोपाल बोल रहा हूँ, ग्राम पटोरसा जिला।
7: क्या हाल चाल है गोपाल जी?
8: बढ़िया है, घर पर है, अभी से धूप में चल रहे।
7: कहाँ से बोल रहे हैं?
8: जिला गुना पटोरसा।
7: अच्छा, तो क्या हो,
8: मनोरमा जी बोल रहे हैं आप?
7: जी हाँ
8: जी, आपसे तो बहुत दिनों बात हो रही है।
7: तो क्या काफी दिन बात चल रही है?
8: हाँ जी, अभी तो क्योंकि लगाया था 2 सितम्बर को लगाया था, आई लगाया। गाना सुनना है?
7: बता रही
8: है, सुनना है वो दिल वाले ले जाएंगे, कुमार सानू, लता मंगेशकर की आवाज में, वो जी देखा तो जाना सनम प्यार होता है, दीवाना सनम जी वाला। डेडिकेट भी आएगा?
7: बता रही
8: है, सुनील साहू जी है, ज्योति साहू जी है, जीतन दाकर जी है, और आपके लिए भी है, और फिल्म जो सुनने वाले को भी है।
7: प्ले करते हैं गाना आपका?
8: कर दीजिए
7: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: थैंक यू।
1: नाम बताओ।
0: और
1: कहाँ से?
0: बात कर रही हूँ।
1: तो क्या है आपकी फरमाइश?
0: पाकिस्तानी सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: कौन सा?
0: पाकिस्तानी सॉन्ग।
1: ओके, और डेडिकेट भी है?
0: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्त को और आपको भी।
1: ओके जी, तो फिर प्ले कर देंगे ना आप?
0: जी, थैंक यू
1: जी।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18-744।
9: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM।
14: जी मैं सुबह
13: जी,
14: कैसे हैं?
13: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
14: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर का मौसम कैसा हाल है?
13: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
14: लगातार बारिश हुई। कल तो बहुत जोर से बारिश हुई और अभी भी बारिश होने की संभावना है, लगातार अभी 7-8 दिन से बारिश होते है। आज सुना दिए मैम, पुरानी फिल्म है, सच्ची फिल्म का गाना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी जो है, फिल्म का गाना है, महेंद्र कपूर की आवाज में, गीत के बोल में, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की फूल बन के एक तरह के गीत वो, तितली खिल के फूल बन गई।
13: एक बार और,
14: मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की फूल तली खिल के फूल हो गई। जी सबसे पहले मैं आपको और जितने भी रेडियो रिंगिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
13: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
14: जी मैम, जी
13: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।
14: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगी दीदी, बिहार भागलपुर जिला तिनसंगा दियारा महाराजगंज टोला से बोल रहे हैं।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हो? हम लोग गंगा कटाव में हैं, मेरे घर में सब हेलो रेडियो इंजन सुनती रहती है।
0: अच्छा जी,
1: मेरे बेटी सब है सपना कुमारी, ऋषि राजकुमार साहब, गाना सुना है चली आना फोन की दुकान से।
0: कौन सा?
1: चली आना फोन की दुकान से।
0: अच्छा, क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: बता सकते हैं। दुकान की दुकान से सारे तीन बजे यही गाना सुना है।
0: अभी गाना आप किसी को सुनाना नहीं चाहते हैं?
1: हाँ, राजकुमार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही

0: छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे।
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up.
16: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
17: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
18: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
17: अभी ठीक है, आप लोग के दुआ से।
18: जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
17: हम बोल रहे हैं ओम साई टेलर, बंजारी रोड पुलिस के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
18: चलिए, तो कैसे हैं आप?
17: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
18: जी, हम लोग भी बढ़िया
17: है। चलिए, बढ़िया काम है
18: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
17: जी जी, नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं। आपका नाश्ता हुआ है?
18: हाँ हाँ, हो गया। तो फिर क्या है
17: आपका नाम मैम?
18: जी, मेरा नाम मनोरमा।
17: मनोरमा, अच्छा, आज दूसरी बार बात हो रही है।
18: जी जी,
17: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
18: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
17: मैम, गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
18: चलिए, कोई बात नहीं,
17: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
18: जी जी, बिल्कुल।

0: बस इतना ही
1: जी। इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
0: हाँ इतना हम गा रहे हैं, आप लोग सब शो चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
1: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
0: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
1: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गाए हैं, पर जो गाना बताया वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो और इंडियन जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ, और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
1: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो और इंडियन 90.4 FM।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, कारियावाद नंबर 1 से। कैसी है मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं
0: मनोरमा मैम।
1: जी
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए, सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: ये सो चलता है।
1: जी
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए दीदार मूवी से, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: क्या गा के बता सकते?
0: गा के क्या बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको
1: जी।
0: और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो रिंगल जहाँ से सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ
1: आपका
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
8: जी नमस्ते मैम।
7: नमस्ते,
8: कौन बोल रही है मैम? भारती मैम या मनोरमा मैम?
7: मनोरमा
8: जी बोल रहे हैं मैम। कि हम सिद्धार्थ बोल रहे हैं बरौनी से।
7: जी जी, क्या हाल चाल है?
8: ठीक है, अपना बताइए। अपना बताइए मैम, आप ठीक हैं?
7: जी जी, मैं बढ़िया हूँ।
8: मैम गाना सुना था, ऐसे तेरी याद आती है।
7: क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं?
8: हम गाना नहीं गाते हैं, वो सुनते हैं।
7: अच्छा जी, दो लाइन ही गाना है आपको?
8: आगे चाहिए, आगे कोशिश करेंगे, अभी नहीं।
7: ओके जी, और गाना डेडिकेट भी करना
8: सब रेडियो सुनने वाले सभी भाइयों को, आपको और भारती मैम को।
7: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
8: थैंक यू मैम।
7: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: गाना तो रिकॉर्ड होता है और बाद में बहुत लेट से बजता है।
1: जी जी, क्या है ना, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं तो फिर आगे पीछे हो जाता है।
0: आज तो हमारा लेट है, लेकिन उस दिन फोन किए थे सोमवार को, तो लग रहा था कि तीसरे नंबर पे थे हम।
1: अच्छा,
0: लेकिन गाना बजा लास्ट में।
1: देखिए, कोई बात नहीं है, जो लास्ट में करता है उसका ही पहले बजता है, क्योंकि कॉल आगे पीछे हो जाता है। तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
0: फरमाइश के राजा हिंदुस्तानी का टाइटल सॉन्ग बजा दीजिए मैम।
1: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
0: सभी को, डेडिकेट सुनने वाले श्रोता सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
12: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
11: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
12: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
11: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
12: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
11: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
12: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
16: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू, सो SMS फरमाइश के साथ समय 9:25 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस शो से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है, आप तो जानते ही हैं सभी कि पुराने गाने की फरमाइश इस कार्यक्रम की जाती है, तो पुराने गाने की फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने पसंद के गाने के साथ इंजॉय करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कुछ, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना चाहता हूँ। और गाने का बोल है, हम दो प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फरमाइश इस सप्ताह में पूरी नहीं किए हैं क्या? हमें तो लगता है कि आपके गाने हम सुनाए हैं शायद। तो आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो, कैसे हैं आप? और मुझे सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है भूल ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरयावर नंबर एक गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग यदि गाने जल्दी सुनना चाहते हैं तो एक ही मैसेज करके स्थिरता बनाए रखें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज लिखा गया है कि मेघनाथ माझी जी, सर मुझे थानेदार फिल्म का गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हेलो सुनो भैया, माय नेम इज तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, और तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और मैं ब्यूटी परवीन गोपालगंज से, और बहुत निमन गाना बा, इसलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा गाना बजना चाहिए। बिल्कुल बजेगा यदि आप लोग की फरमाइश इस सप्ताह में आज के दिन से बीते दिनों में नहीं सुनाए होंगे तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई, तो मैसेज को रुकते हैं और फिलहाल गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गाने प्ले करते हैं सोनी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैसेज पहुँचाए हुए हैं मेघनाथ माझी जी, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं थानेदार फिल्म का गाना सुना दीजिए, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा। क्यों जी, आपके गाने हम प्ले करेंगे। कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज देखा जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा गाना तो बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा। और आगे मैसेज, सर क्या हाल है, आज तो मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। मैं सन्नी पटेल, तो बिल्कुल आपका भी गाने के फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, और गाने के फरमाइश करते हैं सासों की माला जपते जपते। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम पता कुछ नहीं बताए हुए, तो अपना तो परिचय दे ताकि आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर पाएँ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सोनू सर मुझे गाना सुनना है, गाने का नाम है जियो हो बिहारी गलाल। सत्यम जी जुड़े हुए हैं श्यामपुर से, तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं पल्लवी कुमारी नरेनिया मीरगंज से, और कृपया मेरा भी गाना सुना दीजिए, मैसेज करते हैं। तो चलिए बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं आप सर, बिल्कुल बढ़िया है। और आपका मैसेज हमारे पास पहला भी पहुंचा हुआ है, अभी भी पहुंचा हुआ है, आपकी फरमाइश हम ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते, और इस मैसेज को करती हैं, कहती हैं कि मुझे भी बर्थडे का सॉन्ग सुनना है, निशा भारती विलेज उजवलिया उंचका गांव प्रखंड से, तो बिल्कुल आपका गाना प्ले होगा, और थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मेरा गाना सर, अरे अभी तो मैसेज हमारे पास आते जा रहे हैं, अभी एक ही गाने हम सभी सुने हुए, आप स्थिर रहे, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र करना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सैड सॉन्ग, सही बात है, याद तो आएगी। मैसेज करते हैं निशा शुक्लवा से। कई मैसेज अभी हमारे पास पहुंचते जा रहे हैं, तो मैसेज को रोकते हैं और अगले गाने भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि गाने भी सुनने हैं और मैसेज के साथ एंजॉय भी करना है।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710 3992 या 9765665750।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि सिर्फ सिर्फ आप बोल रहे हैं प्ले करने का कोशिश, तो बिल्कुल हम बोल तो रहे हैं, गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, समय हमारा जो निर्धारित है उतना ही में जितना हो सकेगा उतना। और इस मैसेज को करते हैं सन्नी पटेल जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थानेदार मूवी से लाजवाब सॉन्ग MD 97 दरभंगा भजीतपुर से, बस इसी तरह सुनाते रहिए सुनो भैया। बिल्कुल सुनाएंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो बिल्कुल मज़ा आएगा और मनोरंजन में एक दूसरे का साथ होना चाहिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं पल्लवी, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, आपकी फरमाइश तो पूरा करेंगे। आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुंची है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, माय नेम इज़ तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है, कोई तो है।

0: तभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके ओके, चल ठीक है, प्लीज।

टुडे एमसीएम 9.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगले मैसेज में लिखा गया है कि मुझे बर्थडे का सॉन्ग सुनना है, और कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे, और इस मैसेज को करती है निशा भारती वजोलिया उंचका गांव परखंड से। तो चलिए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपको, और बर्थडे की सॉन्ग प्ले होगी कुछ मैसेज है, तो मैसेज देख लिया जाए। आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो सर, मुझे भी गाना सुनना है, निशा पांडे। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज लिखा गया है कि सॉरी, आपने मेरा गाना 31 तारीख को प्ले किया था, उससे पहले मैं गाँव गया था, उससे पहले फरमाइश ही नहीं किया, देखा जाए तो 10 दिन हो गया। सुनो जी, आप मेरा मैसेज इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि आपके गाने प्ले नहीं हुई है, प्ले नहीं हुई है, तो बिल्कुल प्ले होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपके गाने प्ले ना हो तो हम अभी गाने प्ले ना करें। फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, एक दूसरे गाने के बाद हम सुना ही देंगे आपके गाने। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू, चलिए आपको धन्यवाद है, और आगे से ध्यान रखिएगा कि इससे भी पुराने गाने की फरमाइश करिएगा, कि आपकी फरमाइश की प्राथमिकता दी जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो प्लीज़, बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज जुड़े हुए हैं बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी, आपका मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, और आपके फुल मैसेज शामिल करने की कोशिश रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचाए हुए हैं रोहित जी देहरादून से और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में सुर, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे और भी मैसेज पहुँचे हुए देख लिया जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि लास्ट बार प्लीज़ प्लीज़। बिल्कुल, इसके बाद आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर देंगे, एक गाने सुन लीजिए फिलहाल। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर आज भी मेरा सॉन्ग प्ले हो पाएगा कि नहीं, कोशिश है। और इस मैसेज को करते हैं सन्नी पटेल जी और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाने का बोल है कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे और चलिए आप लोगों की फरमाइश तो प्ले करने की कोशिश है एक एक करके और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एमजी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे अभी हम सभी रोहित जी की फरमाइश सुन रहे थे और यहाँ पे लिखे हुए हैं कि थैंक यू सो मच सुनो जी गाना प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है। रेडियो एमजी सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आखिरी बार वार्निंग मिल रहा है, तो इतनी नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, इनकी मैसेज हम शामिल कर देते हैं और गाने की भी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमा मौजम से और गाने का बोल देती हैं, पाँव में पायल पहन के मैं घुंघरू डोला रे डोला। और डेडिकेट करती है काजल, पिंकी, श्रिया, सनम और सभी को, तो बिल्कुल सब कोई सुनेगा। और आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा, लिखा गया कि सर आज भी मेरा सॉन्ग प्ले नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल प्ले होगा और थोड़ा सा सब्र कर ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया कि सर मेरा मैसेज को शामिल नहीं करिएगा क्या, काफ़ी देर हो गई, बिल्कुल शामिल करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ प्लीज़ कोशिश है कि करके सबकी फरमाइश हम पूरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम नेट पर 4 FM पे।

काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एम सी एम 94.4 FM पे, और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो ही गया है, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अंतिम गाने हमने कोशिश की कि पटेल जी की फरमाइश प्ले कर दें, लेकिन इनके तरफ से गाने की नाम ऐसी बताई गई है कि गाने मिल ही नहीं रहे हैं, और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं, और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं। अंतिम गाने प्ले करते हैं, पल्लवी कुमारी नरेनिया मीरगंज से मैसेज की है और गाने की फरमाइश की है, तू ही मेरी मंदिर तू ही मेरी पूजा, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। तो जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और फिर कल मुलाकात होगी इस अंतिम गाने के साथ। एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रेम 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से नमस्कार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेन 90.4 AMZ पर।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: 9.4
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है।

0: भरतपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: 9.4
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: ऑलराइट।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ मुझे।
10: याद करोगी मुझे?
9: जब जब बारिश होगी तब।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: धुंध सी निगाहों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुंध सी निगाहों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहरे हैं कान मेरे कुछ भी सुनाई नहीं देता, बहरे हैं कान मेरे कुछ भी सुनाई नहीं देता, नोच लिया है जिस्म मेरा प्यार का वास्ता देकर, नोच लिया है जिस्म मेरा प्यार का वास्ता देकर, क्यों वफा के बदले कोई वफाई नहीं देता, क्यों वफा के बदले कोई वफाई नहीं देता।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: कौन है माँ जी?
1: तुम कौन हो? ये गाना कहाँ से सीखा तुमने? कहाँ से सीखा ये गाना तुमने?
2: क्या कहा तुमने? मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: श्रोताओ आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वेत्री कषगम TVK के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यभामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमार विल को मैदान में उतारा है। विपक्षी DMK ने मधुरंतकम से पारदंथमन और धरपुरम से S सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनिता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिद्धार्थ सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया।

0: और एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456151 या 9797-06-575।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तब भौजी, आज सुबेरे ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
6: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
1: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18-744।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: ऑलराइट।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS।

0: बीएमसी जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करे 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: देखी ई दुनिया माया के है आ कैसे में कह करे कवि के का कहना बा शेर बा। अरे नर मूरख कब तक जग में और जीवन व्यर्थ बिता।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं

0: एमएस जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: All right.

दिल में राखब, दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब, दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से, तोहके जान बना के।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87-894-18-744।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856-587।
16: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
17: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
16: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
17: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
16: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
17: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
16: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
12: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।
18: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
19: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
20: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
21: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
20: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
20: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
21: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
20: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
21: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
22: Now pick it up,
23: hello.
22: Now pick your phone up,
23: hello.
22: Pick it up,
23: hello.
22: Now pick your phone up,
23: hello.
24: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello,
25: hello. Hello, namaste, namaskar, kaise hain aap sab? Umeed hai aap sab theek honge. Main hoon aap sabki dost Manorama aur aap sun rahe hain Radio Ringjim 90.4 FM aur samay ho gaya Hello My Choice karyakram ka. To samay ke sath bilkul hazir hoon. Yadi aap humse judna chahte hain to hamara number hai 80 29 94 911. Ji haan 80 29 94 911. To chaliye badhte hain aage aur lete hain pehla call aur sunte hain inki farmaish.
26: हेलो
25: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
26: ठीक है, नमस्ते मैम।
25: नमस्ते,
26: और ठीक ठाक है?
25: सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
26: मैं ठीक हूँ।
25: तो क्या हो रहा था?
26: मैम इलाज कर रहे थे।
25: अच्छा, और ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
26: अयोध्या से, अयोध्या के गुंधौर ग्राम से।
25: अच्छा जी, और आपका नाम?
26: सूरज प्रजापति। एक गाना सुनना था।
25: बता दीजिए।
26: गाना है जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आए।
25: क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं?
26: मैम गाय तो
25: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
26: सबसे पहले आपको और जितने सुनने वाले हैं सबसे।
25: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्ते,
26: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हमको गाना सुनना था, तो आप सुनाएंगे गाना? मैडम दीदी, आप क्या गाना दीजिएगा? भोजपुरी वही जो प्यार में नहीं थी वफा। कौन सुन के गाना सुना दीजिएगा दीदी?
1: और ये गाना
0: मेरे सबको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी जी, और वैसे आपका नाम?
0: जय किशोर प्रसाद। हम छपरा के रहने वाले, छपरा बिहार के।
1: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना।
0: जी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
9: The phone ding ding bajti hai, to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
10: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार,
12: बरारी जगदीश से बोलते हैं।
11: कहाँ से?
12: बरारी जगदीश, छाया के बगल से।
11: अच्छा अच्छा, कैसन बानी रहुआ?
12: बानी अपन बताई।
11: जी, मुझे भी बढ़िया बात।
12: पहली बार बात होता है, सोनी मैम से बर्फल बात होता है।
11: अच्छा,
12: बहुत ज्यादा धीरे चलता है फोन, जब 5-7 मिनट हो गए लगा।
11: अच्छा,
12: जब 11 बजे लगा गाना सुने के बाद कचारी लाल के जो नसीब में निकल रहा हुए बजा दे।
11: गाना तो गा के बता सकते हैं लाइन?
12: ना गाना ना गानी तो उसने सुनी रेडियो पर एक दिन तो लिया। ये मेरा वाइफ बड़ी गई।
13: हेलो
11: जी,
13: नमस्ते मैडम।
11: नमस्ते,
13: क्या हाल बा?
11: जी बढ़िया बा, अपन बताए रहुआ कैसे बानी?
13: ठीक बा, अपन कहे?
11: जी हमार भी बढ़िया बाटे। वैसे क्या बात की फरमाई?
13: गाना सर बात करने में बजा दी और मैंने 200 पढ़ती तब ये बजा
12: तो फरमाइश से बता दी।
11: चलिए कोनो बात नहीं, रहुए बता दी।
13: हम तो फरमाइश करें बढ़िया सारी अलग सिलसिला के बाद में
11: तो दो लाइन गा के सुनाई थी तो ठीक रही
13: ना? दूसरा मेरी गाय
11: ना कहे अभी कोनो दिक्कत बा?
13: कोनो दिक्कत नहीं के।
11: हाँ तो जाए
13: ना? ठीक है, कोनो बात नहीं के, सुना दूंगा ना मैं।
11: कौन सा?
13: ये बढ़िया सारी वाला।
11: चलिए तरह गाना प्ले करता नहीं
13: जी।
11: गाना आज ना तो कल बाजी हो जाए। ठीक बात, प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: हम अमर कुमार पारनावादा से बोल रहे हैं मैडम
1: जी। क्या हाल चाल बा?
0: ठीक बा मैडम, गाना सुनना है हमको।
1: बता दीजिए।
0: ये गाना नहीं है ये, एक साथ छोड़ देला भोजपुरी गाना, जब समय होला कमजोर कोई साथ छोड़ देला।
1: जी जी,
0: ये गाना हमको सुनना है मैडम। आप लोग को भी सुनवाना चाहते हैं। हमारा लड़का का नाम है राजा गुलशन, अप्पू मेरा भाई है, ये सब दोस्त को सुनाना चाहते हैं मैडम।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: किस दिन बजेगा मैडम?
1: आज नहीं तो कल बजी जाएगा, दोनों दिन में।
0: मतलब टाइम पे बताइए एक बार जी, मतलब किस टाइम पे बजाते हैं? थोड़ा
1: 5 से 7 के बीच बज जाएगा शाम।
0: आज के दिन?
1: आज भी बज सकता है और कल भी। आप 5 से 7 के बीच सुन लीजिएगा।
0: जी मैडम।
1: ओके।

0: डोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: Now pick your phone up.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजी 90.4 FM में।
13: नमस्ते मैडम जी।
12: नमस्ते,
13: नेहा बोल रहे भोरे से।
12: जी जी, कैसी है नेहा जी?
13: क्या समाचार है आपका, नाश्ता पानी हो गया?
12: जी मेरा भी बढ़िया है, नाश्ता पानी भी हो गया है। और आपका?
13: मेरा भी अच्छा है।
12: तो क्या कर रही थी अभी आप?
13: आपका इंतजार, काम को करके फोन लगा रहे हैं तो अभी लगे।
12: चलिए,
13: काम करते हैं आप फोन लगाते हैं।
12: चलिए बढ़िया। तो क्या है फिर आज की फरमाइश?
13: फरमाइश अलका अग्नि का गाना।
12: गाने के बोल?
13: अलका अग्नि कोई भी गाना।
12: अच्छा, कोई भी?
13: जी।
12: चलिए बढ़िया। और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
13: जी, आपको जितना रेडियो रिमझिम आगे सब सुनता है, डायरेक्टर और जो अंकल जी है उसको बहुत अच्छा लगता है, अभी सब दोस्त सब सुनते हैं उसके साथ।
12: जी, वैसे आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
13: सब कोई अच्छा है, आप लोग अच्छा है, हमारे परिवार, रेडियो रिमझिम सब।
12: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
13: तो गाना शाम के चलेगा, कौन से लगा?
12: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
13: आज बजे है मेरा गाना, कल 8 बजे।
12: आप ये तो नहीं बता सकते, आज या कल दोनों दिन में बज ही जाएगा, सुन लीजिएगा।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी बढ़िया है, आप बताइए।
1: हमारा जो ठीक है।
0: वैसे नाम बता दीजिए अपना। जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना सुनाइए। आप अच्छी हैं?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ।
1: और रेडियो रिमझिम के परिवार अब ठीक है ना?
0: जी जी, सब कोई बढ़िया।
1: हमको एक गाना सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: ये गाने का बोल है छोटी सी उम्र।
0: कौन सा?
1: छोटी सी उम्र में अल्लाह को दुआ कर रहे हैं लोग, मैं चाहूँगा। और ये गाना आपको जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो, नमस्ते जी।
9: नमस्ते,
8: कैसे हैं?
9: मैं बढ़िया हूँ।
8: पहचान गई हूँ,
9: किया प्राणी बोल।
8: कैसे हैं
9: जी? मैं बढ़िया।
8: और बताए, नाश्ता उठा हो गया? जी मेरा भी हो गया है। आज नाश्ता में कोई लेट नहीं हुआ है, अच्छे से हो गया है। आप बताए, आप अच्छे से किए ना? आपसे ज्यादा देर तक लोग बात करता है ना, तो आपको थोड़ा सा पानी और खाना दोनों जरूरी है ज्यादा देर बात करने के लिए।
9: कितना ख्याल रख रही है मेरा?
8: ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, मतलब कुछ रिश्ता अपने दूर से बनाया ना बनाए, बल्कि दूर के रिश्ता अपना से कम नहीं होता है, उसके एक रिश्ता वो भी एक अलग होता है ना।
9: जी जी।
8: तो और बताए, मौसम कैसा है?
9: मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
8: हाँ, दोनों लगी रही है। और भी वो शो क्यों नहीं हो रहा है 12 बजे वाला? और आज भी नहीं चलेगा?
9: नहीं।
8: और आप लोग के चक्कर में बताइए, हम लोग रेडियो ऑन एयर करते करते अब आवाज सुनने के मिले, अब मिले, अब मिले, बाकी केवल गाने सुनने के मिल रहा है।
9: अब क्या करिएगा?
8: अच्छा,
9: अभी जो रिकॉर्डिंग।
8: हाँ वो तो बात है दीदी जी, आप भी आते तो आपको भी तो लोग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और बात सही है, जब तक अगर उधर से ऑर्डर ना मिले आप लोग भी तो कुछ नहीं कर सकती हैं।
9: जी जी, ऑर्डर तो है ही, अगर हम 12 बजे वाला शो चलाएं तो फिर ये छूट जाएगा ना।
8: हाँ हाँ, मुझे ये दो रिकॉर्डिंग आप 12 बजे तक में करेंगे जी?
7: नहीं 12:30 बजे तक होता है।
8: 12:30 बजे तक, और अच्छा करते हैं आपसे सारे लोग बात करने के लिए बेकरार रहता है और टाइम निकाल कर आता है। और आज मैं बताऊँ तो आज मेरा घर थोड़ी सी खुशियाँ है और आज मेरे एक भतीजा है प्यारा सा क्यूट सा, आज उसका जन्मदिन है दी।
7: तो उनको मेरे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
8: और बाबू की तरफ से उसका नाम है अभिमन्यु कुमार, तो बाबू की तरफ से आपको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच बर्थडे विश करने के लिए। और मैं बताऊँ तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी हार्ट थोड़ी डाउन है
7: जी।
8: आज मैं बताऊँ आज की तरह थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बाकी आज बाबू के लिए थोड़ी सी टाइम निकाल रहे, मैंने सोचा था कि आज तो एक गाना बन रहा है उसके लिए।
7: जी जी, वैसे क्या हो गया, अपना ख्याल रखा करिए
8: जी। और ख्याल तो रखी रहेंगी वो,
7: तो
8: दिखाने तो जाना पड़ेगा ही
7: जी।
8: तो बता दीजिए बिना देरी किए, जो एक फूल दो मालिन का मूवी है ना, उसमें एक सॉन्ग है बहुत प्यारा, मेरे मन में से परिश्ता तुमसे कैसा है ना था
7: जी। जी
8: जी, एक सॉन्ग बजा दीजिए।
7: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
8: जी। और ये गाना सभी को जो रानी की तरफ से, आपको भी तरफ से, और सभी की तरफ से, मेरे तरफ से भी
7: जी।
8: और भी कोशिश करिएगा लोग शो को चलाने के लिए, इसलिए आप सभी के लिस्टनर सब बेचैन रहते हैं सब
7: जी। जी बिल्कुल,
8: अगर आप भी आती तो शो अच्छे लगता, आप भी शो करती तो आपको भी सुनकर तो अच्छा लगता।
7: कोशिश रहेगा,
8: चलिए और भी ना देरी की आगे भी कर लीजिए, और बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, आप हैं तो हम लोग भी हैं।
7: अच्छा

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन 90.4 FM में।
6: जी नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: कैसन बने रहूगा?
5: जी बिल्कुल बढ़िया बनी। अपन
6: नाश्ता पानी बढ़िया से भइल?
5: हाँ हाँ, हो गई बार और भइल।
6: हाँ वे तो हो गई बटे। मौसम कैसन बा?
5: मौसम ठीक बा। ना ना, बारिश तो नहीं हुई। ना वैसे नाम बता दिया अपन।
6: दिल्ली से, दिल्ली से।
5: अच्छा जी, वैसे क्या होता?
6: हम गाड़ी चलाई थे, गाड़ी लेकर निकल कौनिया के 11 पहुंच गल बा, तो कहना थोड़ा ट्राई करल जा। अब बुझा था कि ये तीसरा कॉल है हमारे, एक मतलब
5: ना दूसरा कॉल है।
6: दूसरा कॉल है? हाँ, तो काफी देर से बात हो तो लखा ना, तो ऐसे कौनिया कहीं हो सकता है तीसरा कॉल हो
5: दूसरा कॉल?
6: कम से कम रोगे आई ना, दिन में कम से कम रोगे, थोड़ा बहुत प्रोग्राम चलाई।
7: जी जी हम तो जरूर चलाई थी, लेकिन फिर जान है 5 बजे के जान सो चले ला करो भी तो चलावल जरूरी बने।
6: सुनो भाई दिन में रहबे ना करो लाइन
7: तो चली करो कोनो बात नहीं, 2-3 दिन और ही उसके बाद से तो
6: हां तो सोमवार के बाद तक कोई प्रोग्राम वो चल जो करी तो जैसे कुछ कहल ना जा सकेला, मान लेने की समय जब आके कह के ना आवेला के रुके ना सब ही लोग जैसे के बैठे तो कल सुनो भाई गौरव तो कहा तू साइकिल से साइकिल कहा तू लड़ा ले रहो आगे से तो वही तो हम कौन है तो कहे ना सुनो भाई की गनवा डेडिकेट कर दिया कि साइकिल से साइकिल लड़ावे ली तो दुनिया देख आगे बता दिया ला
7: जी जी
6: गाना में सबसे पहले अपने के भारतीय सोनू भाई के स्पेशल डेडिकेट भाई आप बाकी जितना के सुनी जैसे साइकिल में कालू लड़ाई लड़ान जाके था डेडिकेट बा बाकी और भी कोई लाइन लागल बात है ज्यादा टाइम ना लगे हम तो नमस्कार
7: नमस्कार
6: आपका दिन शुभ हो दिल्ली से
7: जी प्ले करते हैं सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 FM में।
0: मैडम जी प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: हम तो पता नहीं है कि हमारा जो अपसेंटर है का।
1: ना ना बिल्कुल ना।
0: हाँ, कम से कम 185,000 के छोड़ दिलो नहीं। अब ले देखनी तो 3 मिनट कम बात को हमें कहीं लगाई ना तो आज हमारा दिन खराब चल जाये।
1: अरे दिन खराब ना दे, देखी फोन लाग गई
0: ये बड़का बात बा। तो
1: सब बढ़िया बा, कैसा मानी?
0: बस ठीक है बानी, रोड लोग ध्यान में वो बना से 11 बजे बानी। हम कहने की इतना पूछा था कि आज बात नहीं हो पाई।
1: अच्छा,
0: लेकिन रोखे वाला रहा तो हो ही
1: गई। का होता लगी
0: काम होता पूरा दो दिन, 2 दिन से थोड़ा बिजी बानी, वही में टाइम निकाल के वो जरूरी था। कहने की हाजिरी कम से कम लाग जाओ ना तो आज एब्सेंट चल गई। हाँ, एक दिन एब्सेंट लग छे।
1: आज ना भैया,
0: आज ना भैया, कब तक चली रिकॉर्डिंग?
1: लास्ट
0: लास्ट तो क्या हुई
1: देखल जाता का होता।
0: अरे चलाई हुई ना टूटल फूटल। टूटल फूटल अगर सर कहते तो चलाई हो, अपना से ना कहो चलाई, बाकी सर अगर कहते तो टूटल फूटल डर भय छोड़ के चलाई।
1: अच्छा ठीक बा, सर कहे तो चलबे करी।
0: सर कहे तो चलाये ये मानना की ना चलाये, टूटल फूटल वही हो, कोशिश करें। कोशिश करें तो कोशिश करे वाला की कभी हार तो होला ना, ऐसे कोशिश ना छोड़े के।
1: नाम बता दी अपन
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। आगे वो फरमाइश ले ली दिल्ली राज के नया धमाल मचौले बा। भतरा तो के होता की तो गर दौरा दे हो, ये सुनादम
1: जी। आके के सुनाए के भी बा,
0: पहला नंबर तो रौरा के सुनावे के बा, बाकी भारती जी के भी सुना देवे के बा, सोनी जी के भी सुना देवे के बा, और जितना हमारे नाम से जाने वाला वही सबके सुना देवे के बा।
1: ओके जी, ओके चलिए प्ले करते हैं लड़गाना। जी सुनाते रहें सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
13: To dosto break ke baad aap सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी मैम, नमस्ते।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM।
15: जी मैम धन्यवाद। कैसी हैं मैम?
14: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: सब आपकी दुआ है मैम, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बताइए आप।
14: जी जी बोलिए।
15: बोल रहे हैं आप लोग बताइए, आप लोग कैसी हैं? आप लोग ठीक ठाक है ना?
14: जी जी हम लोग भी बढ़िया है, सबको यहाँ पे ठीक ठाक है।
15: चलिए ऊपर वाला की दुआ रहे कि आप लोग और अच्छा से अच्छा रहे।
14: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
15: मैम, मैं आपका पुराना श्रोता हूँ, कटिया गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
14: और आपका नाम?
15: मेरा नाम संगम पासवान।
14: अच्छा
15: मैम, एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
14: बिल्कुल,
15: आज बोल रहा हूँ की एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
14: जी जी बिल्कुल।
15: बेटी ऐसे चलो ताटे।

0: तुम ही समझाओ ऊपर वाला दुश्मन बा दुनिया, तुम ही समझाओ ऊपर वाला अरे दुश्मन बा दुनिया। बेटी के जितने लोग जान से भी जानी कर ऊंचाउन करे नाम खूब जानी, बेटी के जान से ज्यादा जितने लोग जानी स्वर्ग में जाए खाती ऊंचा नाम गानी। बेटी के कबो नहीं अरे करया अपमान हो, बेटी के कबो नहीं अरे करया अपमान हो, भोली पराया उनकर अतने बकाम हो, भोली पराया उनकर अतने बकाम हो। धन्यवाद मैम, हमारा ही लेखनीय शब्द था मैम, अगर कोई त्रुटि होगा तो मैं माफी चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा ही था और बहुत अच्छा ही गाया आपने।
0: जी मैम, अब मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, फिर भी मैं जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ छोट मोट लिखता रहता हूँ समाज के लिए, दुनिया के लिए, कि कुछ नया किया जाए, कुछ भेजा जाए।
1: जी,
0: और रेडियो म्यूजिक के माध्यम से बहुत लोग सुनने वाले हैं, थोड़ा मेरा शब्द को भी लोग सुनेंगे तो शायद अच्छा लगे।
1: बहुत ही अच्छा गाया आपने।
0: जी मैम, खाना वाना खाई कि नहीं मैम?
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: मैम हम लोग तो सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं तो 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, तो आज की फरमाइश यही है?
0: नहीं मैम, फरमाइश वो लेखनीय गाना था, गाना नहीं है, मैं खुद बनाया था उस गाने को। और गाना में मैं खुद गाना को मैंने लिखा था उसको, कोई गाना नहीं है। और गाना हमको सुनवा दीजिए अपना, जिला को अनु दुबे का जो सॉन्ग है तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे,
1: क्या आप ये भी गा के बता सकते हैं?
0: तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। दिल तो बच्चा है इसको ना समझ पाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। यही सॉन्ग है मैम।
1: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं।
0: मैम मैं तो क्या करूँ, मेरे को भी तो चॉइस था कि कुछ करूँ, लेकिन कुछ कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहा मैम, इसलिए हमको छोड़कर परदेश आना पड़ा, नहीं तो मेरे को संगीत में बहुत मन लगता है मैम।
1: जी जी बहुत ही प्यारा गा रहे हैं।
0: वो तो इतना प्यार देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि हमारे जैसे आदमी को इतना आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ कि आप लोग के जैसे मन हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और आगे भी मैं कुछ ना कुछ रेडियो रूम जिम पे आऊंगा तो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आऊंगा और सुनाऊंगा।
1: की और ये गाना जो बताया वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: अरे एकदम एकदम, हमारा मित्र लोग है, एक दुबई में बिट्टू है उनको, और एक मध्य प्रदेश में है सोनू भाई को, और शशिकांत को, वो भी कुवैत में है, इन्हीं लोगों को मैम। वो लोग भी रेडियो ना मोबाइल के माध्यम से वो भी लोग सुनता है, तो वो लोग भी बोले थे कि अगर कभी फोन लगेगा तो यार मेरा भी मुझे भी डेडिकेट करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई याद आएगा तो जरूर करूंगा। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं मैम। और हम लोग कटिया में जो भी दुकान वाले भी रेडियो का अपने जैसे सैलून वगैरह होता है उसमें भी लगा कर रखते हैं, और हम लोग जाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हैं फिर भी।
1: अच्छा जी चलिए मैम, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: सलाम अलैकुम मैम।
13: वालेकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
14: गोपाल में
13: जी, कैसी हैं
14: आप? अच्छे हूँ मैम, आपने बताया कैसी हूँ?
13: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या कर रही थी आप?
14: बस आपके पास कॉल लगा रही हूँ, हमारे बच्चे साथ में बच्चे कॉल कर रही हूँ। लाइक भी दिया बहुत ऐसे, मौसम कैसा है मैम? यहाँ तो बारिश हो रहा है,
13: हल्का धूप निकला हूँ।
14: हाँ इधर भी बारिश हुआ था, बहुत देर हुआ था, करीब 10 बजे करीब हुआ, अभी भी धूप हल्का इधर भी हुआ, मतलब मौसम ठंडा।
13: जी तो वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
14: गोपालगंज से बोल रहे हैं।
13: गोपालगंज में कहाँ?
14: गोपालगंज में पढ़ता हूँ।
13: चलिए ठीक है, तो फिर क्या है आपकी फरमाइश?
14: गाना सुनना है।
13: बता दीजिए।
14: देखा चाहिए गाना सुनना, क्या होता है गाना सुनना?
13: और गाना
14: जितना सुनने वाले भाई अभियानी को सबसे सुनाना चाहती हूँ अपने घर वालों को।
13: बोलना जी, तो फिर आपको
14: बोल रहा हूँ,
13: सुनते रहिए सबका रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैं सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे यार। आप फोन लगाते हुए मैम तो बहुत मुश्किल से, तो अभी तो फोन लगा मैम, 1 घंटा हो गया ट्राई चलते चलते मैम। जी, बहुत बिजी जा रहा मैम।
0: जी,
1: और मैम वहाँ का मौसम तो क्या हाल चाल है मैम?
0: मौसम धूप निकला हुआ है,
1: बारिश नहीं है मैम?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है
1: जी। हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है मैम, अभी धूप है। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो आज एक फरमाइश है मैम, हम आपके हैं कौन और गाने के बोल है दीदी तेरा देवल दीवाना, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगजिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड

0: कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
7: नमस्ते दीदी।
8: नमस्ते, ना आप नाम बता दी। चीनतनी नाम बता दी, फिर भी अच्छा हम बताएं। तो हम बता दी कि गणेश बोला नहीं ना। अरे कहा ना कि कहीं गलती से की वर के नाम रख देती तो दिक्कत हो जाती ना।
7: और
8: सब बढ़िया बा, लेकिन ऐसा मत पूछी काहे के रहुआ जगह पर की वर है पूछी जाओ दिखरा और नाम धरन
7: सकते।
8: कुछ ना, बस रहुआ सभी से बातें होता।
7: स्लो
8: तो हम चला ले, लेकिन आप इंजन कॉल रिकॉर्ड पत्र नहीं करो के तो बनावा जरूरी बा।
7: दोपहर बाद में की बना सको, बना सको समाचार बाद।
8: जी तो समाचार के बाद भी तो सोच रहे था ना।
7: चले रहता ना चले थी।
8: अच्छा,
7: लेकिन कोनो काम से हार ना मान रहा, ठीक बा। हिम्मत बाकी ना हम कहे
8: जी जी रे सभी बानी ना, तो फिर हम कहा हिम्मत हारे।
7: चलो ठीक बा, मेला का सहारा के बाद तो बोलो तेन। गाना बजा दी जब साथ देवे के ना रहे तो प्यार का है के कही जो।
8: अच्छा और गाना के सुनवाए के
7: दीदी कॉटन लोगा के सोनी दीदी के आरती दीदी के और दिव्या दीदी और कृष्णा को भी और जितना रेडियो सुन रहे हैं सब लोग
8: तो फिर प्ले कर
7: ठीक बात हम सुन रहे ठीक बात ये गाना बजाए
8: हाँ बिल्कुल ठीक बात प्ले कर देना सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.1 में।
0: नमस्ते दीदी, क्या
1: नमस्ते
0: हाल है? हम
1: जी, बढ़िया। बा अपन बताई,
0: ठीक बटे। सुनो क्या है ना, उठाएंगे
1: अभी तो, अभी फोन आ होता तो अभी तो उठाई नहीं है।
0: कॉबे रिंग करा कभी कॉबे से?
1: अच्छा, किससे पहले बात होत रहा?
0: हेलो मनोरमा दीदी की बात, दीदी मुझे आते नहीं के होती है।
1: रउआ पहचाने की हम के बोलते हैं
0: तो लागत है मनोरमा दीदी।
1: हाँ
0: तो लागत है। बोलिए, आज सब खाना वाना हो गए?
1: हाँ हो गए बारा। और भैया?
0: हाँ हमने भी हो गए
1: जी। वैसे नाम बता दिए अपन,
0: करिश्मा कुमारी तीसरे में रहने से।
1: आरा और भैया कैसन बनी?
0: भैया ठीक, भैया ठीक बड़ा। हम सब को लागत रहा सलाई नहीं है कल अंदा हम जा रहे जेनियो देखे बार में लाग गए ले सहेंगे।
1: देखिए हम भी, हमके भी पता चल गया कि रुआ फोन करता नहीं, वैसे उठा लेनी है जल्दी।
0: हाँ
1: नंबर तो ना पहचानी है, लेकिन आवाज से पहचान लेनी है। बहुत ही अच्छा बोले नी रुआ,
0: भी बहुत अच्छा बोले नी।
1: हाली
0: सबसे मस्त समाज राहुल लगेला एगो भारतीय दीदी से।
1: हम तो बता दीसन की हमने के दोनों जानी से अच्छा रुआ बात करे नी,
0: रुआ करे नी
1: तो
0: बोली अच्छा लगेला। तो तू चली है मेरा?
1: वो तो ना चली, कहे से की
0: ना चली
1: ना, कहे से की अब हम ई जन कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो एकरो के तो बनावल जरूरी बना।
0: हाँ बिहानो ना चली उससे।
1: तो 2 दिन तक बंदे रही।
0: कौन तारीख चले?
1: अब देखिए जब भारती जी आ जाए तो स्टार्ट हुए, अगर हाँ टाइम मिले तो कहीं हम ही स्टार्ट करें।
0: हाँ क्या करें अब,
1: अब टाइम के हिसाब से देखा जाए अपना।
0: मेला घूमा चाहिए
1: ना, कहाँ पुरसोदा मेला घूमे की, मेला घूमे चल जान सन तो फिर रउआ लोग के फरमाइश पूरा करी।
0: मेला चल जाए घूमे,
1: रउआ करे नहीं है की ना?
0: हमने गाँव कभी नव आए मेला तक नव जान सन, 25-26 ले बाटे हमने गाँव का मेला।
1: अच्छा अच्छा,
0: जाए
1: बहुत मेला से उठे ले ले हैं।
0: हाँ ले ले हैं
1: जी। चलिए तो क्या बात की फरमाइश?
0: फरमाइश रहुआ पसंद से, अपना पसंद से
1: ना ना रहुआ लो, इतना मुश्किल से कॉल कैले बनी लो तो रहुए लो बताई थी तो ठीक रही।
0: आज रहुए पसंद से सुन ले तनी।
1: अच्छा
0: कौन बजा दी अपना पसंद?
1: हिंदी की भोजपुरी?
0: भोजपुरी बजा दी कौन?
1: चलिए ठीक बा, क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
0: हाँ सबसे पहले रहुआ के, भारती दीदी के, सोनी दीदी के, जितना सुनता है लोग वहाँ लगे। और
1: चलिए ठीक बात, गाना प्ले करता नहीं।
0: ठीक है, बाय
1: बाय। सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009491 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सवे सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और ये हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गलवानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

सबसे पहले जितना भोजपुरिया भाई बाणन बिरहा लोकगीत सुनने वाला सब भोजपुरिया भाई के हम एक स्वर में पूरी पार्टी की ओर से प्रणाम सलाम करत बने और आशीर्वाद के प्रतीक्षा रखत बने कि आप लोग यही तरह आशीर्वाद देत रहे। और ये वो महाभारत के नया बिरहा महाभारत के नया एगो प्रसंग बा बिरहा के अंदर देखल जाए। हम हमेशा बताइला कि बिरहा के मूल चीज बिरहा के मूल निचोड़ कहानी होला। कहानी से दिमाग अगर सुने वाला कहट जाए तो ओम प्रकाश यादव के बिरहा सुनल व्यर्थ। ध्यान देव से भी बात कहाँ से भाव कहाँ से लिहल गई कहनाम बा का मास्टर बात उस समय की है। छोड़ कर राजपाट हस्तिनापुर की तोड़ मोह माया का बंधन चले ओम नमः शिवाय जाप करते हुए संद्रुपद नंदनी पांडु नंदन चले भूख प्यासे पथिक पथ पे आगे बढ़े धूप लगने लगी सब छहाने लगे काल रूपी कलिराज आकर वहां अपनी

भाव उस समय का है दोस्तों, जब द्वापर युग का अंत चल रहा था, अंत होने वाला था, और युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को लेकर के ये पांचों पांडव, पांचों पांडव, पांचों भाई साथ में द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ रहने वाला एक कुत्ता था जिसका नाम तुकाराम बताया गया, ये लोग चल दिए पहाड़ पर गलने के लिए, हिमालय की पर्वत की चोटी पर जाकर हम लोग गल जाएंगे, मोह माया ये राजपाट सब कुछ त्याग करके, मतलब युधिष्ठिर के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। पांचों भाई बैरागी के रूप में द्रौपदी को लेकर के और अपना शरीर गलाने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। चलते चलते चलते चलते कुछ दूर जाते हैं, साथ में तुकाराम कुत्ता भी जा रहा है। कुछ दूर गए, थक करके एकदम लाचार हो गए थे पांचों पांडव, द्रौपदी, कुत्ता तुकाराम। रास्ते में पीपल, पाकड़ और बरगद पेड़ लगा हुआ था, छाया दिखाई पड़ा। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के जा करके उस छाया में आराम करने लगे। तुकाराम कुत्ता भी आराम कर रहा है। इतना लोग थक गए थे पांचों भाई और द्रौपदी साथ में तुकाराम कि जब पीपल के छाया के नीचे लोग आराम किए, आराम करने लगे, उस वक्त इनों को नींद आ जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत हवा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चलत बा, सुतल हुए लोग। अचानक कुछ देर के बाद भीम की नींद टूटी है बाबू, और भीमसेन के नींद टूटी है, देख क्या रहे हैं कि कुछ दूर पर एक बड़ा सुंदर मेला लगा है, बड़ी सुंदर मेला लगा है। चारों भाई सोए हैं, द्रौपदी सोई है, तुकाराम सोया है, लेकिन भीम की नींद टूटी है। भीम देख रहे हैं कि अरे अभी तो हम लोग सोने के पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दूर पर बड़ा सुंदर मेला लगा है। भीमसेन किसी को जगाते नहीं है, उठ कर चल दिए और मेला में पहुँच गए। हुआ क्या बाबू, यहाँ एकला इंतर दिहल गई का मास्टर।

भीमसेन के नींद टूटल बा। कुछ दूर पर मेला देखा तड़न, लोग नाचत गावत बड़न। चारों भाई द्रौपदी और तुकाराम के सुतले छोड़ के आ वही मेला में पहुंच गयलन। मेला में घूमे लगलन, भीमसेन जाके मेला में घूमत पड़न। वो समय फैल का

0: अच्छा कुछ देर के बाद चारों भाई के नींद टूटल बा। द्रौपदी कभी नींद टूटल बा, तुकाराम भी जाग गईलन।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: युधिष्ठिर के साथ में जवन कुत्ता रहलन, तुकाराम सब जाग गए, लेकिन भीम तो मेला में पहुँच गए, बड़ा मेला मेला के जाके मजरा देखत हूँ। यार चारों भाई सोचे तो उनके ये भाई सब बातें, भीम कहाँ चल गए, हमनी के अली जा नींद लागे से पहले या कुछ ना रहा, अब बड़ा सुंदरी मेला लाग गई, कहीं भीम मेला में तो ना चल गए घूमे। चारों भाई अभी विचार करते हैं, लेकिन एक बार भीम के बात सुना। भीम जब मेला में पहुंचल बड़न, मेला घूमतन, ऊजा नजराना का देखलन बाबू, कवि जी का बात लिखे के पड़ल, बढ़ के एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा, मास

और बुढ़वा के लग गए धीरे धीरे भीमसेन पहुंचलन। सोचे थुवन की यार इतना गजब बा, आखिर इतना सुंदर घोड़ा एकर चारों गोड़ उल्टा कई के ऊपर बांधल बा, घोड़ा लटकल बा नीचे मुंह है, आई बुढ़वा लग गए बैठल बा, आखिर बात का बा। बुढ़ऊ से जाके भीमसेन लग गए गैलन आ बुढ़ऊ से एगो बात कहलन। वो जो पुरनिया बैठा था उसी से भीमसेन कहने लगे, क्या कहे बाबू?

ए बुढ़ऊ, जितना जल्दी होके घोड़ा के गोड़ खोला आए कर दाम बतावा। अरे मर्दे, तोहरा से बड़ हत्यार है दुनिया में केहू ये नहीं के। इतना बड़ हत्यार बैठल बड़ा, इतना सुंदर घोड़ा के उल्टा गोड़ कही के बनले बड़ा, लाज नहीं के शर्म नहीं खेवन। भीमसेन डांटत हूं, कहत हूं उनका

0: कालन के जल्दी करा, देरी मत करा, न तब एको खैर तुहार बाकी न बा। बुढ़ऊ भीम के बात सुन के हंसत हन। इतना जब बात बुढ़ऊ सुनलन तो ओ भीम से एगो बात कहलन हंस के। का कहलन? तरज बा, का तरज के लाइन बा मास्टर? फिल्म का नाम बलम परदेसिया, वो है तरज बा जो रेडियो रिकॉर्ड से आप लोग सुनेलन कि हंसी के जो बोला, अरे हंसी के जो बोला तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई भी तुहार क्रिया। लेकिन गाना का हमरे भाव दिहल गई।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: उबड़ऊ कहलन भीम से, का काहे दहिया दिखावेला, काहे दहिया दिखावेला मोट बबुआ।

कलश की मोट दे लेके हमके धमकाव मोती आ जवन तू है बात कहत रहे इतना बड़ बड़ के बोलत ए मर्दे जा घरे तारा नियन हमारा घरे नाती परल बा का कहले बा।

0: ए भैया इतने बात बुढ़ाऊ जवाब भीम के दिलन हो, कलन की मोट दे हिम्मत दिखावा, तोहरा से आंख दिखावला से हम डेरा ना जाए, सीधे चल जा, ए घोड़वा का बर्दाश्त चोट ना कर पैबा, समझला। भीम टकर टकर मुंह तिकवत हो पुरनिया आदमी का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, फरक्का जल संधि के नवीकरण में बिहार के हितों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 9 के खिलाफ आरोप तय। गंगा, पुनपुन और कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी। भागलपुर में बाढ़ के पानी में टूटने से 5 लोगों की मौत। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से भेजी गई पेंशन की राशि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि फरक्का जल संधि के नवीकरण में बिहार के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज मुंगेर में एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत की है।
2: यह जो समझौता बांग्लादेश से होने वाला है, हम लोगों ने आग्रह किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय विदेश मंत्री जी से, कि 12 महीना पूरे साल जब भी पानी पीने की आवश्यकता हो, पानी पीने के लिए और बिहार के खेत के लिए पानी हम जब लेना चाहे, हमको ये आजादी बांग्लादेश को पानी दीजिए, लेकिन बिहार के हित को देखते हुए उसको पानी देने का काम कीजिए।
1: इधर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि यदि फरक्का जल समझौता आगे बढ़ता है तो इसमें बिहार की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। पटना में जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार के हिस्से का पानी तय किए बिना संधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।
3: बिहार के हिस्से का पानी वैज्ञानिक तरीके से असेसमेंट करके और 2050 को फैक्टर मानकर कि 50 में बिहार का पॉपुलेशन कितना होगा, उस समय कितना पीने के पानी की जरूरत है, खेती के लिए कितना जरूरत है, उद्योग के लिए कितना जरूरत है, वो हिसाब भी हम लोगों ने दिया है। वो हिसाब को का पानी तय करके वो हिस्सा बिहार को दे करके ही कोई बात हो।
1: IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत ने तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में आगे मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद हैं। यह मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे के रांची और पुरी स्थित होटलों के टेंडर में कथित अनियमितता और जमीन के लेन देन से जुड़े आरोपों से संबंधित है। अदालत ने सभी आरोपियों को 3 अक्टूबर को पेश का निर्देश दिया है। इस मामले में अदालत ने 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। प्रदेश में गंगा, पुनपुन, सोन, कोसी और अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में गंगा के जलस्तर में कमी आई है। गांधी घाट पर जलस्तर लाल निशान से लगभग 1.38 मीटर ऊपर है। भागलपुर और

0: रसोई घर और 15 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों का भी संचालन किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश राधा ने आज कटिहार और बेगूसराय जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रभावितों के बीच युद्ध स्तर पर राहत अभियान जारी है।
1: जहाँ जहाँ प्रभावित यहाँ 4 प्रखंड हुए हैं, उस सभी जगह पोलोथिन चीट, सामुदायिक किचन और पशु का चारा, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और चापा कल का भी गराई हुआ है। और जहां जहां जरूरत पड़ेगा सामुदायिक किचन का और बढ़ते जाएगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेंगे।
0: इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटा गांव में सड़क किनारे जमा बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार सभी लोग बाढ़ के पानी से गुजर रहे थे, इसी दौरान उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हो सका, जिसके चलते यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैशाली जिले के लालगंज में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन फ्लाईओवर का बीम लॉन्चर गिर जाने से 7 श्रमिक घायल हो गए। 6 घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक श्रमिक को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री निशांत सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,06,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मासिक पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। 1,233 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अब हम लोगों ने तय किया है बिहार के 1,05,00,000 परिवार में पेंशन योजना का लाभ 10 तारीख को हर हालत में उनके खाते में देना पड़ेगा। और जो छूट गए हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप इसमें आवेदन कीजिए और आपको बिहार सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोनों पैसा मिलाकर 1,100 रुपया 10 तारीख को आपके खाते में डालने का काम करेगा।
0: इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में रैयतों के हितों की रक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि टाउनशिप में आपसी समझौते को

0: दी जाएगी।
1: आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार कहीं भी किसी भूस्वामी के या किसानों की जमीन बिना सहमति के हम उनके नहीं लेने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम लैंड पूलिंग में जाए। उदाहरण स्वरूप अगर किन्हीं की जमीन है और हमारे प्लान में वो आ रहा है हमारे, तो हम उनको आग्रह करेंगे कि आप अपनी जमीन हमें दीजिए, 55% जमीन हम डेवलप करके, मतलब डेवलप से हमारा अभिप्राय है कि हम फैसिलिटीज वहां क्रिएट करते हैं, तो 55% जमीन हम किसानों को वापस देंगे और 45% जमीन सरकार के पास रहेगी जिस पर हम काम करेंगे।
0: नगर विकास और आवास मंत्री के साथ यह पूरी बातचीत आकाशवाणी के सामयिक चर्चा कार्यक्रम के तहत शनिवार रात 7:52 से सुनी जा सकती है। प्रदेश में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के तहत 9,90,000 युवाओं के पंजीकरण का लक्ष्य है। माय भारत के राज्य निदेशक कपिल देव राम ने बताया कि अब तक 35,220 युवा पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।
2: कार्यक्रम के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता के लिए बिहार का लक्ष्य 9,90,000 निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन बिहार राज्य के लिए 66,000 युवा प्रतिभागियों का क्विज प्रतियोगिता में ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराना है। दिनांक 9/26 तक बिहार में 35,220 पंजीकरण हो चुका है। बिहार का लक्ष्य प्राप्ति के लिए माय भारत स्वयं सेवक जिला युवा अधिकारी प्रत्येक दिन शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में, संस्थान आदि में जाकर छात्रों के बीच क्विज प्रतियोगिता का पंजीकरण करा रहे।
0: श्री राम ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में होगा, जिसमें चयनित युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सहकारिता, बीमा और वित्तीय सेवाओं को एक साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है। पटना में एक कार्यक्रम में श्री कुमार ने कहा कि सहकारी समितियों को समेकित सेवा केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने सहरसा हवाई अड्डे के विकास के लिए 42,52,00,000 रुपए की निविदा जारी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। निविदा के तहत रनवे और अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 15 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। प्रदेश में अक्टूबर महीने तक 2,50,000 PPL परिवारों को 1-1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर से जोड़ने का लक्ष्य है। नई दिल्ली में आयोजित 19वें एनवायरमेंट एंड एनर्जी कॉन्क्लेव में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने ये जानकारी दी। श्री कुमार ने निवेशकों और उद्योग जगत से बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी का आह्वान किया। मॉनसून के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के महाराजगंज में सबसे अधिक 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
3: दिनांक 11 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बांका जिले के चांदन के अंचलाधिकारी रविकांत कुमार को 20,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अंचलाधिकारी शिकायतकर्ता से जमीन का दखल कब्जा दिलाने के एवज में घूस ले रहा था। दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र अंतर्गत बंसरा ठीकरा टोल प्लाजा के पास एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी से आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। आक्रोशित लोग शराब तस्कर को छुड़ाकर भाग गए। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मुंगेर के जमालपुर लोको शेड में 2 लोगों की आमने सामने की टक्कर और 1 लोको के पटरी से उतरने के मामले में 4 रेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पटना सचिवालय थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड की कमरगामा पंचायत में सूखे नशे के बढ़ते चलन को लेकर महापंचायत हुई। महापंचायत में ग्रामीणों ने बच्चों और युवाओं को नशे के खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, फरक्का जल संधि के नवीकरण में बिहार के हितों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 9 के खिलाफ आरोप तय। गंगा, पुनपुन और कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी। भागलपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से भेजी गई पेंशन की राशि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आदमी बतावत हो, नतीजा निकलल का बाबू? तरज बा का तरज के लाइन बा? इहे तरज बा।

कलन भीमसेन बताओ गदा लेके खुर्चे थे कलन के अब बतावा कहते हुआ कि एकर चोट न सब तब बतावा न तो अब यही गादा से मार के आ तोहर भूभुन फोड़ दे। आखिर कवि जी के टेरी लिखे के पड़ल का तनी और बढ़ गया अरे धन दौलत ना यशबाब चाहिए बुढ़वा कहलत की सुना एकर कोनो मोल नहीं खे तू दाम पूछे थे वो घोड़ा के ना एकर कोनो कीमत नहीं खे हमार बात सुन तो हम घोड़ा दे दे यही तरह से तिहा में घोड़ा दे तो लेकिन एक सवाल बा का बुढ़ऊ कहलन है कि अरे धन दौलत ना यशबाब चाहिए अशोको वही ले

पुरनिया आदमी तैश में आ जाता है। पुरनिया आदमी ओ भीम से बतावत हो, कलश की यह अश्व को बड़ा उन्मादी है, यह अश्व बड़ा उन्मादी है, ऊपर आकाश में जाएगा, मैं तुरंत खोलूंगा। जो जो घोड़े का पैर बांध करके मैंने रखा है तो खोल रहा हूँ, सुनो। लेकिन एक कारण है, भीम से उपरनी आदमी बता रहा है कि यह अश्व बड़ा उन्मादी है, ऊपर आकाश में जाएगा, अश्वारोही को पल भर में यह चारों दिशा घुमाएगा। प्रश्न का उत्तर बतलाने पर लगाम तुम्हें थमाऊंगा, अगर आई खोट चुनौती में तो गुलाम तुम्हें बनाऊंगा। कहलस के हम घोड़ा खोलत हैं, पैर खोलत हैं, या एकरा पतु चढ़ा, पल भर में तो के चारों दिशा में घुमा के लेके चलिए। लेकिन हमारे चारों दिशा में जब तू घूम के अब तो चार थे सवाल बा, वही चारों सवाल के जवाब देवे के पड़ी तुके। अगर सवाल का जवाब दे दिहला तो सेतिहा में तो के घोड़ा हम दे देवे, अगर जवाब ना दिहला तो तोहके गुलाम बना के रखब, जैसे घोड़ावा के बनले बानी वही तरह तोहरो हाथ गोड़ बांध के लटकाई। भीम चुनौती के स्वीकार कैलन है और घोड़ा खोलन, पुरनिया आदमी घोड़ा खोलन है, लगाम भीम के थमौलन, फान के भीम घोड़ा पर चढ़लन है, चढ़त कहीं कि घोड़ा आकाश में उड़ गया और चारों दिशा में पल भर में चारों दिशा में भ्रमण करा करके भीम को फिर मेला में हाजिर कर दिया। नतीजा निकलल का बाबू,

सबसे पहले वो घोड़ा भीम को लेकर के उत्तर दिशा में चला है, और जब उत्तर दिशा में पहुंचा तो भीम क्या देख रहे हैं, कच्चा धागा पर हिमालय पर्वत झूलत हुआ। अवाक हो गई भीमसेन देख के, तब घोड़ा चल बा दूसरी ओर, कहा कि पहुंचल पुरु बाबा के, पहुंचल पुरु बाबा के, ओरी जाबा घोड़ा।

उत्तर दिशा के ओर से हटके और जब पूर्व दिशा की ओर चल तो का भीम देखत हुवन, भीमसेन देखत हुवन कि एगो सुई के छेद में हाथी फसल बा। पूरा शरीर तो निकल गई बा लेकिन पूछिया ओकर अभी फंस के रह गई, पूछिया रह गई बा वही में सुई के छेदे में। अवाक हुवन भीम से, फिर पूर्व दिशा से अब दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा बढ़ल बा। नतीजा निकल का कि दक्षिण के दिशा देखी बढ़ल धा

जब दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा चलल हो तो का देखलन भीमसेन दक्षिण में गइलन तब देखलन कि चारों कोना पर चार ठे नाली बा आ बिचवा में एक ठे कुआं बा। कुआवा फफाता तो नलिया भर जाता लेकिन वो नाला जब फफाता तो कुआवा भरते नहीं। चारों नाला जब फफाता तो कुआं नहीं के भरत आ एगो कुआं फफाता तो चारों नाला भर जाता। अवाक हो गए भीमसेन देख करके ये नजराना तीन दिशा की चौथे दिशा की ओर जब बढ़ा है घोड़ा नतीजा निकला क्या बाबू पल भर में पहुंचला पश्चिम जबा घोड़ावा हो बाबू दक्षिण दिशा की ओर से घोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ा है। तीन दिशा में तो भीम को भ्रमण करा दिया चौथे दिशा पश्चिम की ओर जब चला है नतीजा निकला क्या कि पल भर में पहुंचा ले पश्चिम पल भर में पहुंचा ले पश्चिम जबा घोड़ा घेर

0: पश्चिम की ओर जब घोड़ा लेके भीम के पहुंचल बा तो का भीम देखत हूँ कि बड़ा सुंदर बगीचा लागल बा, बड़ी हरा भरा सुंदर फल फूल लागल बा बगीचा में, चारों तरफ से बगीचा के घेरल बा छेड़दवाली दिहल बा, चारों तरफ से टिकासन पर छेड़दवाली दिहल बा, लेकिन उस छेड़दवाली बगीचवा के फल तोड़ तोड़ खाता।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही,
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
2: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
9: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। स्वच्छ पानी, साफ सफाई और स्वस्थ जीवन, गांव की बदलती तस्वीर और लोगों की इन छोटी छोटी कोशिशों की कहानी को सुनिए रेडियो की जुबानी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी प्रस्तुत है। कार्यक्रम का दूसरा भाग।

0: दोस्तों लीजिए, आ गया फिर वही दिन वही वार जिसका हम बेसब्री से करते रहे थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय, इस बार धोएंगे साबुन से हाथ खाने से पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं उद्देश्य है हमारा,
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करता है सुविचार।
1: प्रण करे आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके पास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज वन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री ODF भारत बनाना था और फेज टू में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छ का तुमको याद है ना, देश के सभी गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब यह न कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका हो, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
1: अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.01 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना और हर गांव में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता और इस महाअभियान को बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM और सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी हैं। चलिए पहले सुनते हैं।

मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।

0: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से यह सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई, याद रखना है और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वक्षिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
0: अच्छा, कैसे?
1: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा, कहाँ?
1: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।
2: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।
3: गई मैं दूषिका गांव की नालियों और कूड़े के ढेर से निकलकर कभी निष्क्रिय शौचालयों में कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते तो हैं मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं वहीं तो बसती हूं मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
4: घर में शौचालय तो है पर नल की टोटी खराब है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं। ऐसे शौचालय ना होने पर तो क्या हमें फिर से खेतों में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
3: ये है मेरी एक और जीत।
5: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय हैं और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए,
6: गांव में गांव वाले गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाए गए कूड़ेदानों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
7: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जलभराव हो रहे हैं।
3: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं करते, उसके रखरखाव का ध्यान नहीं करते और गांव में भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ादान का भी प्रयोग नहीं करते।
2: एक दिन गांव एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर, आंखों में नए भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
0: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों हैं? और इतनी गंदगी कहाँ है भैया?
8: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं।
0: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता ही है।
3: मैं हूँ इन सब का कारण। बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कुछ दिन में मैं तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
0: अच्छा, तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया। देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
3: मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं कर रहे हैं, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोगों पर मैं राज करती हूँ, उनकी यही लापरवाही मेरी जीत है। लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजन।
0: दूषिका तुम गलत हो, यह काम अभी हो रहे हैं और हमारी गांव की जनता को समझ है। वह स्वच्छता को कायम करने के लिए शौचालय का रखरखाव, गांव की स्वच्छता के लिए गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय पर करती रहती है, समझी दूषिका?
3: हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है। लेकिन गंदला पानी तो तथा मलीय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी भी काफी समय लगेगा।
1: दूषिका, गंदला जल प्रबंधन और मलीय कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, डीवेट्स और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
2: सुजल गांव में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
0: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। यह हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाते हैं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों में जो शौचालय है उसका रख रखाव और उसकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
2: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं, और गांव के लोग एकजुट होकर सामुदायिक शौचालयों का भी रख रखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गाँव की गली में छिपकर देखती है।
3: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल नहीं फैला? अरे अरे, ये गांव में ये सब क्या हो रहा है?
2: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
1: गाँव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। यहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रख रखाव होता है। जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
2: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।

0: कोशिका की ये चमक मेरी गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है। सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा। शौचालय का नियमित रूप से रखरखाव हो रहा है, नाली साफ कर दी, घर पर ही कूड़े कचरे का निपटान हो रहा है, घर का गंदला जल घर के किचन गार्डन में सोखते गड्ढे में ही प्रयोग हो रहा है।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गाँव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं। सुजल की बातों को गाँव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय साफ रखो, स्वच्छ गाँव बनाओ, अपना कूड़ा कचरा करो सही निपटान, तभी बढ़ेगी गांव की शान। दूषिका थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सबने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल दी। अब मुझे जाना होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही है, बच्चे नाच रहे हैं।
2: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है, इसीलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमा होने दो।
3: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय और गंदगी से ही बीमारियां बढ़ती हैं। अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
2: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी।
2: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना, शौचालय के बाद हाथ ना धोना बीमारियों को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
4: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गाँव में स्वच्छता रखेंगे, और हमारा गाँव ODF प्लस मॉडल बनाएंगे, तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो।
2: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, सूखे और गीले कचरे को सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण, साथ ही रख रखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलिन कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास FSTP बनाएं या पास के शहरी FSTP या STP में जुड़ें।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं, गांव में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
4: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान। स्वच्छ

0: सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम।
1: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जन आंदोलन के जरिए बता भी रहे हैं कि ये मिशन भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। आइए इस संदर्भ में एक स्वच्छाग्रही से की गई बातचीत सुन लेते हैं।
2: स्वच्छाग्रही ये कौन होते हैं?
1: स्वच्छाग्रही वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही अब हमारे साथ है।
3: स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी। स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी।
4: जी नमस्कार, गोपालगंज बिहार का लोकप्रिय कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 पर आप सभी का स्वागत है। रेडियो रिमझिम द्वारा स्वच्छता के संबंध में जिला प्रशासन में जो स्वच्छता अभियान का कार्यालय है वहाँ के पदाधिकारियों से कर्मियों से सकारात्मक सहयोग लेकर जन जागरूकता का कार्य किया जाता है। और रेडियो रिमझिम ऐसी भाग्यशाली संस्था है कि गोपालगंज का स्वच्छता विभाग पदाधिकारी हो कर्मी हो लगातार सहयोग देते हैं, जिससे गोपालगंज जिले के 14 प्रखंड 2 अनुमंडल में और नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम एक स्वच्छता ग्रही से बातचीत कर रहे हैं और उनका परिचय उनकी जुबानी आपको सुना रहे हैं। क्या नाम हुआ, अपना पता होता बताइए।
5: मेरा नाम दीपा है और हम गोपालगंज ब्लॉक के दुखरन पंचायत के स्वच्छाग्रही और हम यहाँ 2017 से सरकार भी कर रहे हैं स्वच्छाग्रही का। लेकिन हम लोग का पूरे ब्लॉक में 14 ब्लॉक में मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं और वो लोग अपने स्वच्छता से कर रहे हैं। उन लोगों को सरकार कुछ अनुदान देता है जो लोग काम करते हैं। और यहाँ पे स्वच्छता अभियान में यहाँ पे 2017 से लेकर के अभी तक गांव में हम लोग पहले स्वच्छता शौचालय के बारे में लोगों को जागरूक करते थे शौचालय बनवाने के लिए उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन अब हम लोग SLWM पे काम कर रहे हैं जो कि कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना है। हमारे यहाँ पूरे जिले में पूरे पंचायत में हर पंचायत लेवल पे एक पर्यवेक्षक है और कुछ कर्मी लोग हैं। कुछ लोग पर्यवेक्षक लोग पूरे पंचायत का देख रेख करता है। उनके अंदर जो कर्मी है वो कूड़ा कचरा सुबह में हम लोग के यहाँ से गाड़ी चलता है और कूड़ा कचरा दरवाजे से हर घर जाकर के हम लोग दरवाजे से कूड़ा कचरा उठाते हैं और उसको एक WPU बना है वहाँ रखवाना है। और हम लोग के यहाँ से खाद एक गोपाली खाद भी बना है जो कूड़ा कचरा से खाद बनता है। तो एक गीला कचरा होता है एक सूखा कचरा होता है तो उससे खाद बनता है उसके वो हम लोग के यहाँ से गोपाली खाद भी बना है जो पूरे बिहार में उसका लोग यूज कर रहे हैं। और बस यही है, हम लोग पूरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
4: 2017 से 2026 हो गया, आपने इतना लंबा समय स्वच्छता ग्रही के रूप में एक महिला होकर काम की है, तो आपको कौन कौन सी परेशानी आई है 2017 में और इस समय जो है 2026 में क्या बदलाव देख रही हैं?
5: पहले 2017 में चूंकि ये चीज बहुत वर्षों से पुराना है, लोग खुले में शौच करते आ रहे हैं तो ये आसान चीज नहीं था। पहले हम लोगों को जाकर भी गांव में घर घर समझाते थे तो लोगों को लगता था कि नहीं क्या है हम लोग बाहर ही जाएंगे। लेकिन शौचालय बाहर जाने से महिलाओं में बहुत दिक्कत होती थी तो लोग धीरे धीरे हम लोगों को जाने पे जन जागरूक हुआ तो महिलाएं को जो दिक्कत होता था शौचालय बन जाने के बाद लोग अपना उपयोग करने लगा तो उनसे बाहर उन लोग जाना छोड़ दिया, ये फायदा उन लोगों का हुआ। और उसके बाद से हम लोग जाते थे तो परेशानी तो होती थी, लोगों को लगता था कि क्या करने आए हैं ये लोग। लेकिन बाद में उन लोगों को लगा कि नहीं ये हमारे ही बारे में, हमारे ही अच्छाई के लिए लोग, हम ही लोग को जागरूक करने के लिए ये लोग आ रहे हैं, इसी वजह तब उन लोगों को माने हम लोग को सपोर्ट भी करने लगा। बाद में बीच बीच में हम लोगों को कुछ दिक्कत होता है तो हमारा जिला कार्यालय है DRDA, वहाँ पे हमारे सीनियर लोग हैं, DC सर हैं, CB&IC सर हैं, SLWM सर हैं, जो कि जरूरत पे जो सपोर्ट करने का जरूरत हो, जिन लोगों को हम लोग नहीं समझा पाते तो उन लोगों को हम लोग को बुला करके वो लोग समझा उमझा देता है और धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगा। और फिर सरकार भी सहयोग कर रही है, प्रचार प्रसार करके IC से प्रचार प्रसार होता है, डेली हम लोग का ये नमस्ते योजना चल रहा है, गांव-गांव में जाकर के हम लोग बैठक करते हैं TV के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ये चीज सरकार भी कर रही है और हम लोग का भी सहयोग होता है और गवर्नमेंट का भी सहयोग होता है। जरूरत पड़ता है तो हम लोग के DC सर, डायरेक्टर सर, BDO साहब, जिला पदाधिकारी, ये लोग जाते हैं फील्ड में और बैठक करते हैं, इससे लोग जागरूक हो चुके हैं।
4: यानी 2017 में जितनी परेशानियां थी आज 2026 में बहुत कम हो गई है। हमने ये भी देखा है कि गांव-गांव में आप लोग डब्बा दिए हैं कचरा रखने का, पूरे जिला में वो किस तरह का डब्बा देते हैं और कितना डब्बा देते हैं थोड़ा बताइए।
5: पहले तो सेकेंड फेज में 2 डब्बा देना था हम लोग को, एक में सूखा कचरा ब्लू था एक और एक ग्रीन कलर।
4: जी जी जी।
5: तो ब्लू वाले में सूखा वाला रखना था और ग्रीन वाले में जो सब्जी का कटिंग वगैरह होता था वो रखना था। और लेकिन अब सरकार का योजना है कि 4 डस्टबिन रखना है, एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लू और एक ग्रीन। तो जो ब्लैक और रेड है उसमें जो शीशा का जो जैसे इंजेक्शन वगैरह का होता है वो सामान रखना है, और जैसे बच्चों का डाइपर हो गया ये सब चीज दूसरे वाले में रखना है, इसलिए सरकार 4 दे रही है।
4: अच्छा, स्वच्छता ग्राही के रूप में जब आप हैबिट चेंज कर रहे थे, लोगों का आदत बदल रहे थे, तो उस समय और कौन सी परेशानियां हुई? हमने तो सुना है कि गोपालगंज में कई गांवों में लोग जो है खदेड़ देते थे स्वच्छता कर्मी को, भागो भागो तुमको कोई काम नहीं है, वो दौर कैसा था?
5: नहीं, वो दौर और लोगों के लिए कैसा था हमको नहीं पता, चूंकि हम महिला है और जाकर जमीन रास्ता से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी परेशानी होती है। मतलब कोई भी अच्छा काम करने जाइएगा तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको बहुत अच्छा ही मिल जाना है। तो जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि एक ही बार में आजाद हो गया, गांधी की पिटाई खाए तब जाकर के देश आजाद हुआ, बहुत आंदोलन करना पड़ा। इसी तरह ये स्वच्छता भी हम लोग का एक आंदोलन था और उसमें हम लोग रात्रि चौपाल, सुबह में हम लोग यहाँ पे अनिमेश सर, DM साहब थे, भोर में जाते थे हम लोगों को समझाने, रात में रात्रि चौपाल होता था, मुखिया जी लोग का सहयोग होता था, हमारे जिला से लोग बहुत लोग जाते थे, हम लोग बैठक करते थे वहाँ के लोगों से के साथ, महिलाओं के साथ बैठक करते थे, समूह में बात करते थे, लोग के घर घर जाकर के लोगों को समझाते थे कि हम लोग आप ही के लिए आए हैं, हम कुछ लेने थोड़े गए थे, हम लोग को जिनमें बात उन लोगों महिलाओं का जो बाहर उन लोगों को जाना पड़ता था, तो लोगों की बेटियाँ बाहर पढ़ी लिखी हैं, समझदार हो गई हैं तो बाहर नहीं जाना चाहती, उन लोगों को लगा कि नहीं हम लोग सही बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं।
4: दीपा जी, आपका पूरा नाम और पद क्या है और किस पंचायत में आप हैं और किस ब्लॉक में हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
5: वैसे पहले तो मेरा घर गोपालीगंज हुआ, के चौधरी के सामने मेरा घर है और हम यहाँ 2017 से काम कर रहे हैं। तो पहले हम स्वच्छता गली का ही काम करते थे, लेकिन 2018 में एक सरकार के हम लोग के स्टेट से आ गया कि जो लोग पंचायत में कुछ लोग काम करते हैं लेकिन एक दो लोगों को जिला में भी ज़रूरत है, जो कि जिले से रिपोर्ट, पूरे ब्लॉक से रिपोर्ट वगैरह लेने का कार्य। तो अब हम हर जिले, पूरे जिले में जिस ब्लॉक में कार्यपालक सहायक लोग नहीं है उन जगह उस ब्लॉक में हम लोग का वार रूम है और हम लोग ऑफिस से पूरे ब्लॉक से रिपोर्ट का कार्य करते हैं।
4: मतलब कहाँ पहला पोस्टेड हुआ था हम ही जानना चाहते हैं, स्वच्छता ग्रह थावे में?
5: जी,
4: थावे के किस पंचायत में?
5: थावे जब 2014 में हुआ ना, 2014 से ही काम कर रहे हैं, तो जिले का पहला ODF ब्लॉक है था।

0: कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया और यहाँ सब चीज हमको आता नहीं था, फाइलिंग वगैरह काम, कुछ रिपोर्ट लेने का काम, वो सब यहाँ ट्रेनिंग वगैरह मिला हमको। और सर लोग बताए,
1: आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर रेडियो रिमझिम 90.4 को दिया, इसके लिए आपके पूरा स्वच्छता अभियान के कर्मियों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: स्वच्छाग्रही सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छाग्रही बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
1: मुझे ऐसा लगता है सुजल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है और आगे भी सारे गाँव को ODF प्लस मॉडल बनाकर ये जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
0: सही कह रही हो स्वच्छिका, मैं जब छोटा था गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस जन आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
1: तुम गांव के ही स्कूल से पढ़े हो?
0: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है और इसीलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य एक स्वच्छाग्रही की तरह काम करता हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में और बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यह योजना हर स्तर, राज्य, जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है तथा ग्राम स्तर की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
0: बस बस, मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं, वह किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वह भी ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
1: मैं सब समझ गई।
0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड एक में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को कहा था,
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उनमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोताओं के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पहला स्लोगन भेजा है निधि कुमारी ने, ये DAV की छात्रा हैं और इन्होंने लिखा है, एक ही आवाज एक ही काम, स्वच्छ बने मेरा गांव, बहुत खूब। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है रोहित कुमार ने, जो सासामुसा के रहने वाले हैं। उन्होंने भेजा है, गांव में सफाई रही तो बीमारी के काबा मजाल, हमनी के एकजुट होके गांव के बनाए के बा एगो मिसाल। तीसरा स्लोगन जो हमने सेलेक्ट किया है ये पहुंचा है अनंत कुमार की तरफ से, ये गोपालगंज के ही रहने वाले हैं और इन्होंने लिखा है, नई रवानी नई पहचान, स्वच्छ गांव हो देश की शान।
1: वाह, यह तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिख करके भेजे हैं, हमारे श्रोताओं को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है, इन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब, सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले अंक में।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बात बताएंगे और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन में जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले का उपयोग ना करें, यत्र तत्र कूड़ा ना फेंकें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत।

कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
9: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: All right.

0: साथ में मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुम्बकम, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain. Anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: Pradhanmantri Modi ne देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी टाइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026. 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
10: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797-06-575।
18: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
19: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
18: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
19: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
18: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
19: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
18: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
11: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
20: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत पर मचा कोहराम। जिले के 2,83,000 लोगों को सीधे खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। और शनिवार को आ रहे हैं प्रभारी मंत्री जनता दरबार में, भूमि से संबंधित मामलों की सुनेंगे फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले के माझा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भड़कुइया गांव के पास एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों दंपति विद्यालय में अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए गोपालगंज शहर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतकों की पहचान की गई। दोनों मृतक बरौली थाना क्षेत्र के सरया बिसुनपुरा निवासी सेराजुल मियां और इनकी पत्नी शकीला खातून बताई जा रही हैं। दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी भड़कुइया के नजदीक दुलदुलिया मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जख्मी हो गए, अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सिराज मियां अपनी पत्नी शकीला खातून के साथ गोपालगंज के ही हरखुआ गांव में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बुधवार की सुबह दोनों अपने बेटे हुसैन और बेटी नेहा से मिलने जा रहे थे, उन्हें बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक सिराज मियां अपने 5 बहनों के इकलौते भाई थे। घटना के बाद सभी बहनों, माता पिता सहित पूरे परिवार और मोहल्ले में कोहराम मच गया। बच्चों ने सुध बुध खो दिया। छोटे छोटे बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया। जो भी इस घटना को सुनता था उसकी आंखें भर जाती थी। इस हृदय विदारक घटना से अस्पताल परिसर में भी चीख पुकार मच गया था। मृतक के परिजन अस्पताल परिसर में पहुंच गए और दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिया और आगे इस मामले में अज्ञात वाहन के संदर्भ में जांच पड़ताल कर रही है। बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े जिले के लाभार्थियों के लिए आज का दिन खास रहा। गुरुवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेज दी गई। पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के लाभार्थियों को पेंशन की राशि हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम का गोपालगंज के समाहरणालय के सभा कक्ष में सीधा लाइव प्रसारण किया गया, जहां जिलाधिकारी समीर सौरभ सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े सैकड़ों लाभार्थी भी मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए पेंशन राशि के DBT हस्तांतरण को देखा। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,83,732 लाभार्थियों के लिए 31,20,00,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या एवं भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण जो दिया गया, उसके अनुसार वृद्धा पेंशन के तहत 1,69,485 लाभार्थियों के लिए 18.64 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में 46,504 लाभार्थियों को 5,11,00,000 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 19,231 लाभार्थियों के लिए 2,11,00,000 रुपए और बिहार सरकार ने सक्षमता पेंशन योजना के तहत 23,355 लाभार्थियों के लिए 2,45,00,000 रुपए की राशि निर्धारित थी। इसके अलावा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 23,609 लाभार्थियों के लिए 2,59,00,000 रुपए तथा एक अन्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना के 2,548 लाभार्थियों के लिए 28,00,000 रुपए की राशि निर्धारित थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है और इससे लाभार्थियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिलती है। अब सरकार की ओर से DBT प्रणाली के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है तथा लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है, जो अधिक सरल और प्रभावी बना दिया गया है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों एवं आधार संबंधित विवरण को अद्यतन रखने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि बैंक खाता सक्रिय रखने तथा आधार से बैंक खाते से संबंधित आवश्यक विवरण सही और अद्यतन रहने से पेंशन की राशि हस्तांतरण करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की एजेंडा वार समीक्षा की गई। इस दौरान विद्यालयों की आधारभूत संरचना, भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता, आवेदनों के त्वरित निष्पादन एवं विद्यालय निरीक्षण सहित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए गए। भूमिहीन विद्यालयों के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में 83 भूमिहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए 20 डिसमिल भूमि, कक्षा 9 से 12 तक के उत्क्रमित विद्यालयों के लिए 75 डिसमिल भूमि, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में ही चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित अंचलाधिकारी और प्रखंड शिक्षा अधिकारी को समन्वय के साथ अविलंब भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन के लिए निर्देशित किया गया है। प्राथमिक स्तर के भूमिहीन विद्यालयों में कुचायकोट में सर्वाधिक 10, विजयपुर में 5, बैकुंठपुर में 4, जबकि बरौली, गोपालगंज और सिधवलिया में 1-1 विद्यालय शामिल हैं। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के भूमिहीन उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कुचायकोट में 19, बरौली में 11, बैकुंठपुर में 9, पंचदेवरी में 8 एवं थावे में 7 विद्यालय शामिल है। इन विद्यालयों के लिए भी संबंधित अंचलाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान सासा मुसा ओवर ब्रिज पुल के समीप वाहनों की जांच शुरू की थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोका, तभी वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपी विधि विरुद्ध बालक निकला। जानकारी होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। हालांकि कोई अवैध सामान गाड़ी से बरामद नहीं हुआ, परंतु वाहन के सही कागजात आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसे सत्यम कुमार, पिता सूरज राम साकिन सासा मुसा मिश्रौली, थाना कुचायकोट के द्वारा दिया गया है और इस मोटरसाइकिल को भटवा ओवरब्रिज पुल के पास पहुंचाने की बात कही गई थी। मोटरसाइकिल किसको देना था इसकी जानकारी उसको नहीं दी गई थी। अब विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसमें आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। गाड़ी चोरी की बताई जा रही है और इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। शनिवार यानी 12 सितंबर 2026 को जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री गोपालगंज आ रहे हैं। इस दौरान वे 10 बजे अंबेडकर भवन में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जन संवाद कार्यक्रम में मंत्री तथा संबंधित विभागों के बड़े अधिकारी जनता के बीच कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। इस दौरान भूमि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाती है और मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमीन सर्वे और जमाबंदी से जुड़ी गड़बड़ियों के मामलों पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। अधिकारियों की उपस्थिति जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस संवाद में जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी एक साथ मौजूद रहते हैं, ताकि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई भी हो सके और मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सके। इस बैठक का पहल आम लोगों को अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति देना है और इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अगर आपको भी भूमि से संबंधित कोई शिकायत है तो आप अंबेडकर भवन में शनिवार को सुबह 10 बजे से पहुंचकर प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अम्बेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जाना होगा, जहां बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा, जो गोपालगंज के प्रभारी मंत्री हैं, वे आपकी शिकायतों को सुनेंगे और उसे मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास भी करेंगे। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने माझा थाना क्षेत्र के कोइनी में सड़क के किनारे झाड़ियों में रखी 653 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बंटी बबली शराब यहां झाड़ियों में छुपा कर रखी गई थी, कहीं सप्लाई करना था, तभी पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने छापेमारी कर शराब के इस बड़े कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया है। हालांकि इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट के अमुआ बथान स्थित श्री राधा कृष्णा संस्कृत उच्च विद्यालय में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया, जहां जांच के दौरान कुछ खामियां मिलने की सूचना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए बाबू जान मियां, पिता स्वर्गीय शहीद मियां, और असुद्दीन मियां, पिता स्वर्गीय कलामुद्दीन मियां, तथा रिजवान मियां, पिता अब्दुल मियां, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर पहले से मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि 12/6/2026 को पूर्व के विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा वादिनी के घर पर जाकर मारपीट की गई। इसी संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था और जिसमें 3 की गिरफ्तारी हुई। अब इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की और उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन और बेहतर समन्वय के साथ जवाबदेह एवं परिणाम परक कार्यशैली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना भी है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त आवेदनों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बुधवार को विद्यालयों का निरीक्षण कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, पठन पाठन की गुणवत्ता तथा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का अनुश्रवण करते हुए कमियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर जबरन जमीन पर कब्जा करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में आरोपी, जो हरखुआ वार्ड नंबर 23 का रहने वाला ज्योतिष प्रसाद है, इसे पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक महिला ने जबरन उसकी जमीन पर शौचालय निर्माण कराने तथा जमीन खाली करने को कहने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में गिरफ्तार कर आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जादवपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव में घर में पंखे का तार जोड़ते समय करंट के चपेट में आए पिता पुत्र बुरी तरह से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि पिता को बचाने के लिए पुत्र भी सहायता करने गया तो वह भी बिजली के करंट के चपेट में आ गया, जिससे दोनों झुलस गए। फिलहाल दोनों का मॉडल सदर अस्पताल गोपालगंज में इलाज चल रहा है। बिशम्भरपुर थाना की पुलिस ने 171 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जमुनिया स्थित हरि यादव के घर के पास वाहन की जांच करते हुए इस गाड़ी और शराब को पकड़ा है। इस मामले में मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए आरोपी राहुल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो बिशम्भरपुर के ही काला मोटिहनिया का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत पर मचा कोहराम। जिले के 283,000 लोगों को सीधे खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। और शनिवार को आ रहे हैं प्रभारी मंत्री जनता दरबार में, भूमि से संबंधित मामलों की सुनेंगे फरियाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
21: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
22: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
23: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
24: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
23: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
24: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
23: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
24: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
23: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
24: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
25: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
26: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
27: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
25: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
28: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
29: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
30: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
30: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:32 हो रहा है हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, आप सभी से हर रोज ये बातें बताई जाती है कि पुराने गाने के फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। आप यदि सुनना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। यहाँ पे कुछ मैसेज जो हैं काफ़ी पहले पहुँची है तो उस मैसेज को तो हम शामिल नहीं करेंगे और तत्काल के जो मैसेज पहुँची है उस मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हम शामिल करते हैं, लिखा गया है कि हर शाम किसी की सुहानी नहीं होती, चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो बात है इस मोहब्बत में यारो, वरना गोरी राधा सांवले की दीवानी नहीं होती। सोनू भाई नमस्कार, मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और क्या हाल चाल। काफ़ी प्यारी लाइन आपके तरफ से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है फिल्म राज इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे, प्लीज़ सुना दीजिए सर जी। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। और एक और मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि हाय भाई सुनू जी, हम भी जुड़ गए हैं आपके टाइम से, साथ ही मिस शुक्रिया। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए, तो चलिए आप बने रहे हमारे साथ। गाने को प्ले करते हैं कमलेश जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे राज मूवी से इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे।

टेडियम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि लाजवाब, आज बहुत दिनों के बाद रेडियो पर ये गाना सुनने को मिला। MD नौसाद दरभंगा भजीतपुर से, और कहते हैं कि बस यूँ ही सुनाते रहिए। सुनो भैया, बिल्कुल आप लोगों का साथ चाहिए, हम क्यों नहीं सुनाएंगे, सुनाते रहेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज, और अभी तो नहीं पहुंचा हुआ है, तो जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, आज सीटें खाली हैं, आप फरमा सकते हैं और अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। हो सके तो अभी जल्दी गाने कोई बता सकते हैं तो उनकी फरमाइश हम प्ले कर देंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमछम 94.4 FM पे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और एक और मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि वाओ क्या बात है, बिल्कुल

और इस मैसेज को पहुंचाने वाली तृप्ति फ्रॉम नवादा से, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप सभी से फिर से सूचित करेंगे कि यदि आप पसंद के गाने अपने सुनने चाहते हैं तो बिल्कुल फरमा सकते हैं। आज सीटें खाली है, जो भी श्रोतागढ़ फरमाइश पहुँचाएंगे उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होते हैं, तब तक आप सब बने रहे हमारे साथ।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझेम 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि नमस्ते सोनम भैया, क्या हाल है, हमें गाना सुनना है, सुना दीजिए। गुरी है कलाइया, लादू तुझे हरी हरी चूड़िया। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले अपना नाम तो नहीं बताए हुए हैं अभी के मैसेज में, और पीछे देखा जाए तो रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली से जुड़े हुए हैं। तो चलिए रंजीत कुशवाहा जी, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि सुना दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल सुनाएंगे, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि दिल को संभाल के रखो, मन को बहका के रखो, कोई तो गोरे पे काली दीवानी होगी, दिल को थाम के रखो। नमस्कार नमस्कार, दिल दीवाना हो तो मन समुंदर हो, पागल दिल हो तो मन मोमबत्ती हो। गाना क्या मौसम आया है, सभी श्रोताओं के साथ सावन शर्मा जी जुड़े हुए, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, गाना सुना दीजिएगा। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, ओहो बिल्कुल करना चाहिए दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि हाय हेलो सोनू भाई, कैसे हैं, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आप बोले कि सीट खाली है, इसलिए मैं भी एक गाना सुनना चाहता हूँ, और गाना लैला मजनू की फिल्म है। और तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, महमूद जी केरला से। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बड़ी मुश्किल बा, ये वाला सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो बिल्कुल कोशिश रहेगा और इस मैसेज को पहुंचाने वाली तृप्ति तो आपकी गाने तो कल पूरी किए हैं। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास सीट खाली है तो, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीट खाली रहेगा तो आप लोगों की फरमाइश यदि बज गया है तो दोबारा नहीं बजेगा, सीट खाली रहेगा तो बिल्कुल बज सकता है। तो फिलहाल आगे बढ़ा जाए और अगले गाने को प्ले करते हैं हम, और सुनते हैं गोरी कलाइया दिला दो तुझे हरी हरी चुड़िया।

कमल के शाम काफ़ी प्यारे टुडे एमजीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे थे अभी अभी, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए थे। चलिए आगे मैसेज देखा जाए और अगले गाने की फरमाइश भी प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और निशा शुक्लवा से मैसेज की हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि शंक सुना दीजिएगा प्लीज़, गाने का बोल भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार बोलिएगा। और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारा भी शौक सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे एक एक करके। और एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, टुनटुन यादव का शौक सुनना चाहते हैं, तो इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आप पुराने गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। फिलहाल हम अगले गाने प्ले करते हैं, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
2: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।

छड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि काहे भाई इतना गुस्सा क्यों, धोखा तो आजकल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, शुक्रिया देकर आप सतर्क हो जाए और भुला दे तभी आगे खुश रहिएगा। जनहित में जारी है मेरा संदेश और इस संदेश को भेजते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्षण नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल आपने सही कहा और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज लिखा गया है कि नमस्ते भाई कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, सुपर गाना चल रही है भाई। सविता चौहान भोज छपरा से मैसेज करती हैं, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे गाने के उपरांत मैसेज किए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की फरमाइश ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करते हैं सावन शर्मा जी, ये भी काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश किए हुए हैं, क्या मौसम आया है।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन ले हम सब रेडियो 94.4 FM पे सोशल SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। निशा इस गाने की फरमाइश करती हैं डुमरिया से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। एक राजा है, एक रानी है, पास पैसा है और जवानी। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज देखा जाए और लिखा गया है कि कहाँ का मौसम, इतना बढ़िया मौसम आया है। सुनो भाई, हमारे यहाँ तो बहुत ही आज बारिश, गर्मी और धूप आया है। हम भी वहाँ चले, बिल्कुल इधर तो अभी मौसम ठीक ठाक है। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर ओक्सोल नेपाल बॉर्डर से। तो आप भी गोपालगंज में आ जाए, इधर का मौसम सुहावना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काफ़ी दिन बाद मैसेज किया हूं सर, अजय कुमार भगत बेलसुई दरौली सिवान से, और हमको गाना सुनना है। ओ बिल्कुल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन काफ़ी लेट कर दिए हैं आपने, तो आप बने रहे हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर दें। फिलहाल अगले गाने को प्ले करते हैं।

रेडियो MCM 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बिल्कुल काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। और मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। और अंतिम गाने भोजपुरी पहुंचा हुआ है, निरहुआ रिक्शा वाला मूवी से, और इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं अजय कुमार भगत जी बेलसुई दरौली शिवान से। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, और कई सुरतागढ़ की फरमाइश अभी भी मेरे पास है, लेकिन समय जो है समाप्ति का हो चुका, तो आज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। और फिर अगले दिन मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम, तब तक अंतिम गाने के साथ आप सब इंजॉय करते रहें रेडियो MCM 90.4 FM पे, जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: समाचार के बाद आप सब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC NET जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
2: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later tonight to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive tomorrow morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi tomorrow. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirmed their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defence, clean energy, advanced technologies and talent mobility. Union Home Minister Amit Shah today met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. They discussed strengthening cooperation in social development, irrigation, cooperatives, natural farming including millets and solar energy. In a social media post, Mr. Shah said India cherishes its bond with the Aga Khan Development Network tied by a shared commitment to human development. The minister also reaffirmed shared commitment to advancing these partnerships for sustainable development and the greater good of humanity. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And that's the end of this news bulletin. Pika.
3: आपका स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो
4: हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: ठीक है, नमस्ते मैम।
6: नमस्ते,
5: और ठीक ठाक है?
6: सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
5: मैं ठीक हूँ।
6: तो क्या हो रहा था?
5: मैम इलाज कर रहे थे।
6: अच्छा, और ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: अयोध्या से, अयोध्या के गुंधौर ग्राम से।
6: अच्छा जी, और आपका नाम?
5: सूरज प्रजापति। एक गाना सुनना था,
6: बता दीजिए।
5: गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आए।
6: क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं?
5: मैम गाय पाई,
6: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
5: सबसे पहले आपको और जितने सुनने वाले हैं सबसे।
6: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्ते,
5: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हमको गाना सुनना था, सब सुनाएंगे गाना। मैडम दीदी, आपकी क्या गाना दीजिएगा? भोजपुरी वही जो प्यार में नई बेवफा। कौन सुन के गाना सुना दीजिएगा दीदी? आपकी फैमिली
1: और ये गाना
0: मेरे सबको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी जी, और वैसे आपका नाम?
0: जय किशोर प्रसाद। हम छपरा के रहने वाले, छपरा बिहार के।
1: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना।
0: थैंक यू
1: जी।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्कार मैम।
6: नमस्कार,
7: बरारी जगदीश से बोलते हैं।
6: कहाँ से?
7: बरारी जगदीश, छाने के बगल से।
6: अच्छा अच्छा, कैसन बानी रहुआ?
7: और एक बानी अपन बताई।
6: जी मुझे भी बढ़िया बा।
7: पहली बार बात होता है सोनी मैम से, बरबल बात होता।
6: अच्छा,
7: बहुत ज्यादा धीरे चलता है फोन, जब 5-7 मिनट हो गए लगा।
6: अच्छा,
7: जब 11 बजे लगे गाना सुने के बाद कचारी लाल के जेकरा जो नसीब में निकल रहा वे बजा दे।
6: गाना तो वह गा के बता सकते हैं लाइन?
7: ना गाना ना गाओ नहीं तो उतने सुनूंगी रेडियो तो एक दिन तो लिया। मेरा वाइफ बड़ी गई
8: है। जी नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते,
8: क्या हाल बा?
6: जी बढ़िया बा, अपन बताए रहुआ कैसे मानी?
8: ठीक है, अपन कहे?
6: जी हमार भी बढ़िया बाटे। वैसे क्या बात की फरमाई?
8: गाना सर बात करने में बजा दी और मैंने 200 पढ़ती तब ये बजा
7: दी। फरमाइश बता दी।
6: चले कौन बात नहीं कर रही, बता दी।
8: हम तो फरमाइश करम बढ़िया सारी अलग सिलसिल
6: तो दुलाइन गा के सुनाई थी तो ठीक रही
8: न? दूसरा मेरी गाय
6: न कहे अभी कोनो दिक्कत बा?
8: कोनो दिक्कत नहीं के।
6: हाँ तो गाय
8: न ठीक है, कोनो बात नहीं के, सुना दूंगा ना मैं।
6: कौन सा?
8: ये बढ़िया सारी वाला।
6: चली तर गाना प्ले करता नहीं? जी
8: बाजी।
6: गाना आज ना तो कल बाजी जाए। ठीक बात, प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन 90.4 ना।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: अमर कुमार पारनावादा से बोल रहे हैं मैडम
0: जी। क्या हाल चाल बा?
1: ठीक बा मैडम। गाना सुनना है हमको,
0: बता दीजिए।
1: ये गाना नहीं है ये एक साथ छोड़ देला, भोजपुरी गाना, जब समय होला कमजोर कोई साथ छोड़ देला।
0: जी जी,
1: ये गाना हमको सुनना है मैडम। आप लोग को भी सुनवाना चाहते हैं। हमारा लड़का का नाम है राजा गुलशन, अप्पू मेरा भाई है, ये सब दोस्त को सुनाना चाहते हैं मैडम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: किस दिन बजेगा मैडम?
0: आज नहीं तो कल बजी जाएगा, दोनों दिन में।
1: मतलब टाइम पे बताइए एक बार, मतलब किस टाइम पर बजाते हैं? थोड़ा
0: 5 से 7 के बीच बज जाएगा शाम।
1: आज के दिन?
0: आज भी बज सकता है और कल भी। आप 5 से 7 के बीच सुन लीजिएगा।
1: जी मैडम।
0: ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: नेहा बोल रहे भोरे से।
5: जी जी, कैसी है नेहा जी?
6: क्या समाचार है आपका? नाश्ता पानी हो गया?
5: जी मेरा भी बढ़िया है, और नाश्ता पानी भी हो गया। और आपका?
6: मेरा भी अच्छा है।
5: तो क्या कर रही थी अभी आप?
6: आपका इंतजार काम को करके फोन लगा रहे हैं, तो अभी लगे।
5: चलिए,
6: काम करते हैं आप फोन लगाते।
5: चलिए बढ़िया। तो क्या है फिर आज की फरमाइश?
6: फरमाइश अलका याग्निक का गाना।
5: गाने के वो
6: भी अलका याग्निक? कोई भी गाना।
5: अच्छा, कोई भी?
6: जी।
5: चलिए बढ़िया। और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
6: जी, आपको जितना रेडियो रिमझिम आगे सब सुनता है, डायरेक्टर और जो अंकल जी है उसको बहुत अच्छा लगता है, और सब दोस्त सब सुनते हैं उसके साथ।
5: जी, वैसे आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
6: सब कोई अच्छा है, आप लोग अच्छा है, हमारा परिवार रेडियो रिमझिम सब।
5: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
6: तो गाना शाम के चलेगा कि कल चलेगा?
5: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
6: आज बजे है मेरा गाना, कल 8 बजे।
5: आप ये तो नहीं बता सकते, आज या कल दोनों दिन में बज ही जाएगा, सुन लीजिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी बढ़िया है, आप बताइए।
0: हमारा भी ठीक है।
1: वैसे नाम बता दीजिए अपना। जी जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: जी मैं भी अच्छी हूँ।
0: रेडियो रिमझिम के परिवार अभी है ना?
1: जी जी सबको बढ़िया है।
0: हमको एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए।
0: गाने का बोल है छोटी सी उम्र।
1: कौन सा?
0: छोटी सी उम्र में अल्लाह के दुआ करते हैं लोग, मैं और ये गाना आपको जितने सुनने वाले होते हैं सबको सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्ते जी।
6: नमस्ते,
5: कैसे हैं?
6: मैं बढ़िया हूँ।
5: पहचान रही हूँ,
6: क्या प्राणी बोल,
5: कैसे हैं?
6: जी मैं बढ़िया।
5: और बताए, नाश्ता उठा हो गया? जी मेरा भी हो गया है, आज नाश्ता में कोई लेट नहीं हुआ है, अच्छे से हो गया है। आप बताए, आप अच्छे से किए ना? आपसे ज्यादा देर तक लोग बात करता है ना, तो आपको थोड़ा सा पानी और खाना दोनों जरूरी है ज्यादा देर बात करने के लिए।
6: इतना ख्याल रख रही है मेरा?
5: ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, मतलब कुछ रिश्ता अपने दूर से बनाए या ना बनाए, बल्कि दूर के रिश्ता अपना से कम नहीं होता है, उसके एक रिश्ता वो भी एक अलग होता है ना।
6: जी जी।
5: तो और बताए, मौसम कैसा है?
6: मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
5: हाँ, दोनों लगी रही है। और भी वो शो क्यों नहीं हो रहा है 12 बजे वाला? और आज भी नहीं चलेगा?
6: नहीं।
5: और आप लोग के चक्कर में बताइए, हम लोग रेडियो ऑन एयर करते करते अब आवाज सुनने के मिले, अब मिले, अब मिले, बाकी केवल गाने सुनने के मिल रहा है।
6: अब क्या करिएगा?
5: अच्छा,
6: जो अभी जो रिकॉर्डिंग।
5: हाँ वो तो बात है दीपा जी, आप भी आते तो आपको भी तो लोग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और बात सही है, जब तक अगर उधर से ऑर्डर ना मिले तो आप लोग भी तो कुछ नहीं कर सकती
6: हैं। जी जी, ऑर्डर तो है ही, अगर हम 12 बजे वाला शो चलाएं तो फिर ये छूट जाएगा ना।
5: हाँ हाँ, मुझे ये दो रिकॉर्डिंग आप 12 बजे तक में करेंगी जी?
6: नहीं, 12:30 बजे तक होता है।
5: 12:30 बजे तक, और अच्छा करती हैं, आपसे सारे लोग बात करने के लिए बेकरार रहता है और टाइम निकाल के रहता है। और आज मैं बताऊं तो आज मेरा घर थोड़ी सी खुशियाँ है, और आज मेरे एक भतीजा है प्यारा सा क्यूट सा, आज उसका जन्मदिन है दी।
6: तो मेरे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
5: और बाबू की तरफ से, उसका नाम है अभिमन्यु कुमार, तो बाबू की तरफ से आपको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच बर्थडे विश करने के लिए। और मैं बताऊं तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी हवा थोड़ी डाउन है
6: जी।
5: आज मैं बताऊं, आज की तारीख थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बाकी आज बाबू के लिए थोड़ी सी टाइम निकाल कर मैंने सोचा था कि आज तो एक गाना बनता है ना उसके लिए।
6: जी जी, वैसे क्या हो गया, अपना ख्याल रखा करिए।
5: जी, और ख्याल तो रख ही रहेंगी वो,
6: तो
5: दिखाने तो जाना पड़ेगा ही।
6: जी,
5: तो बजा दीजिए बिना देरी किए, जो एक फूल दो मालिन का मूवी है ना, उसमें एक सॉन्ग है बहुत प्यारा, नन्ही सी परिश्ता तुमसे कैसा है नाता।
6: जी जी
5: जी, एक सॉन्ग बजा दीजिए।
6: ओके जी, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
5: जी, और ये गाना सभी को रानी की तरफ से, आपको भी तरफ से, और सभी की तरफ से, मेरे तरफ से भी।
6: जी,
5: और भी कोशिश करिएगा लोग शो को चलाने के लिए, इसलिए आप सभी के लिस्नर सब बेचैन रहते हैं सब।
6: जी जी बिल्कुल,
5: अगर आप भी आती तो शो अच्छे लगता, आप भी शो करती तो अच्छा भी सुनकर तो अच्छा लगता।
6: कोशिश रहेगा,
5: चलिए और बिना देरी के आगे भी कर लीजिए, और बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, आप हैं तो हम लोग भी हैं।
6: अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
2: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्कार।
5: नमस्कार।
6: कैसन बनी रहूगा?
5: जी बिल्कुल बढ़िया बनी। अपन
6: नाश्ता पानी बढ़िया से भइल?
5: हाँ हाँ, हो गई बार और भइल।
6: हाँ तो हो गई बटे। मौसम कैसन बा?
5: मौसम ठीक बा। ना ना, बारिश तो नहीं भइल। ना वैसे नाम बता दिया अपन।
6: ना, दिल्ली से दिलीप राम।
5: अच्छा जी, वैसे का होता?
6: हम गाड़ी चलाए थे, गाड़ी लेकर निकल कौन के ग्यारह पहुंच गल बा। तो कहे ना थोड़ा
7: ट्राई करल जा,
6: बुझाता की तीसरा कॉल है हमारे एक मतलब।
5: ना, दूसरा कॉल
6: है। दूसरा कॉल है? हाँ, तो काफी देर से बात होते रहा ना, तो ऐसे कौनिया कहीं हो सकता है तीसरा कॉल होकर।
5: दूसरा कॉल
6: कम से कम रोगे है ना, दिन में कम से कम रोगे थोड़ा बहुत प्रोग्राम चलाई।
5: जी जी, हम तो जरूर चलाई थी, लेकिन फिर जन है 5 बजे के जन सो चले ला, ओकरो भी तो चलावल जरूरी बा।
6: सुनो भाई, दिन में रहबे ना करल है
5: दो तीन दिन और
6: सोमवार के बाद तक प्रोग्राम चल जो करी। ऐसे कुछ कहल ना जा सकेला, मान लेने की समय जो बात कह के ना आवेला केहू के ना, सब दे सके बटे। तो कल सोनू भाई गौ रहा कहा तू साइकिल से साइकिल कहा तू लड़ा ले रहो में। तो वही तो हम कौन है, तो कहे ना सोनू भाई की गनवा डेडिकेट कर दिया की साइकिल से साइकिल लड़ावे ली तो घूमिया देख आगे बता दिया ला।
5: जी जी,
6: गाना में सबसे पहले अपने के भारतीय सोनू भाई के स्पेशल डेडिकेट रही, बाकी जितना केहू सुनी जैसे साइकिल में कालू लड़ाई लड़ान जाके था करे का डेडिकेट बा। बाकी और भी कोई लाइन लागल बात है, ज्यादा टाइम ना लगा हम। तो नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: आपका दिन शुरू हो दिल्ली से।
5: जी, प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 FM में।
0: मैडम जी प्रणाम।
2: प्रणाम।
0: हम तो सोच रहे कि हमारा जो अपसेंटर है का
2: ना, ना बिल्कुल ना।
0: हाँ, कम से कम 185,000 करके छोड़ दिलो नहीं। अब ले देखनी तो 3 मिनट कम बात कनेक्शन लगाई न तो आज हमारे दिन खराब चल जाये।
2: अरे दिन खराब ना दे, देखी फोन लाग गई
0: ये बड़का बात बा। तो सुनाई
2: सब बढ़िया बा, कैसा मानी?
0: बस ठीक है बानी, रोड लोग के ध्यान में वो बना से 11 बजे बानी। हम कहने की इतना पूछा था कि आज बात ना ये हो पाई।
2: अच्छा,
0: लेकिन भूखे वाला रहा तो हो ये गज।
2: वैसे का होता तो लगी
0: काम होता पूरा दो दिन से थोड़ा बिजी बानी, वही में टाइम निकाल के यो जरूरी था कहने की हाजिरी कम से कम लाग जाओ ना तो आज अब्सेंट चल गई। हाँ, एक दिन अब्सेंट नहीं छे।
2: आज ना भैया,
0: आज ना भैया, कब तक चली रिकॉर्डिंग?
2: लास्ट ईयर वाला
0: तो क्या हुई
2: देखल जाता का होता?
0: अरे चलाई वही ना टूटल फुटल अगर सर कहते तो चलाई हो, अपना से ना कहो चलाई, बाकी सर अगर कहते तो टूटल फुटल डर भय छोड़ के चलाई।
2: अच्छा ठीक बा, सर कहें तो चलबे करी।
0: सर कहें तो चलाये, मानना की ना चलाये, टूटल फुटल वही हो, कोशिश करें तो कोशिश करे वाला की कभी हार तो होला ना। ऐसे कोशिश ना छोड़े के
2: जी। वैसे नाम बता दी अपन
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। आज एगो फरमाइश ले ली, दिल्ली राज के नया धमाल मचौले बा। भतरा तो के होता की तो गरदा उड़ा दे हो, ये सुना दम
2: जी। आके के सुनाए के भी बा,
0: पहला नंबर तो रौड़ा के सुनाए के बा, बाकी भारती जी के भी सुना देवे के बा, सोनी जी के भी सुना देवे के बा, और जितना हमारा नाम से जाने वाला वही सबके सुना देवे के बा।
2: ओके जी, ओके चलिए प्ले करते हैं गाना।
0: करें
2: जी, सुनाते रहें सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी मैम, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, धन्यवाद। कैसी हैं मैम?
5: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: सब आपकी दुआ है मैम, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बताइए आप।
5: जी जी बोलिए।
6: बोल रहे हैं आप लोग, बताइए आप लोग कैसी हैं? आप लोग ठीक ठाक है ना?
5: जी जी हम लोग भी बढ़िया है, सबको यहाँ पे ठीक ठाक है।
6: चलिए ऊपर वाला की दुआ रहे कि आप लोग और अच्छा से अच्छा रहे।
5: वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: मैम मैं आपका पुराना श्रोता हूँ, कटिया गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
5: यार आपका नाम?
6: मेरा नाम संगम पासवान।
5: अच्छा
6: मैम, एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ मैं।
5: बिल्कुल,
6: आज बोल रहा हूँ कि एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
5: जी जी बिल्कुल।
6: बेटी ऐसे चलो ताटे दुनिया

तू ही समझाओ ऊपर वाला दुश्मन बा दुनिया, तू ही समझाओ ऊपर वाला अरे दुश्मन बा दुनिया। बेटी के जितने लोग जान से भी जानी कर घूमे ऊंचा उनकर नाम खूब जानी, बेटी के जान से ज्यादा।

0: अरे करया अपमान हो बेटी के कबो नहीं, अरे करया अपमान हो होली पराया उनकर अतने बकाम हो, होली पराया उनकर अतने बकाम हो। धन्यवाद मैम, हमारा ही लेखनीय शब्द था मैम, अगर कोई त्रुटि होगा तो मैं माफी चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा ही था और बहुत अच्छा ही गाया आपने।
0: जी मैम, अब मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, फिर भी मैं जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ छोट मोट लिखता रहता हूँ समाज के लिए, दुनिया के लिए, कि कुछ नया किया जाए, कुछ भेजा जाए।
1: जी जी,
0: और रेडियो म्यूजिक के माध्यम से बहुत लोग सुनने वाले हैं, थोड़ा मेरा शब्द को भी लोग सुनेंगे तो शायद अच्छा लगे।
1: बहुत ही अच्छा गाया आपने।
0: जी मैम, खाना वाना खाई कि नहीं मैम?
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: मैम हम लोग तो सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, तो आज की फरमाइश यही है?
0: नहीं मैम, फरमाइश वो लेखनीय गाना था, वो गाना नहीं है, मैं खुद बनाया था उस गाने को।
1: चलिए।
0: और गाना में मैं खुद गाना को मैंने लिखा था उसको, वो कोई गाना नहीं है मैम। और गाना हमको सुनवा दीजिए अपना जिला का, अनु दुबे का जो सॉन्ग है, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
1: क्या आप ये भी गा के बता सकते हैं?
0: तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। दिल तो बच्चा है इसको ना समझ पाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। यही सॉन्ग है मैम।
1: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं।
0: मैम मैं तो क्या करूँ, मेरे को भी तो चॉइस था कि कुछ करूँ, लेकिन कुछ कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहा मैम, इसीलिए हमको छोड़कर परदेश आना पड़ा, नहीं तो मेरे को संगीत में भी बहुत मन लगता है मैम।
1: जी जी बहुत ही प्यारा गा रहे हैं।
0: वो तो इतना प्यार देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि हमारे जैसे आदमी को इतना आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है मैम। मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ कि आप लोग के जैसे मन हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और आगे भी मैं कुछ ना कुछ रेडियो रूम जिम पे आऊंगा तो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आऊंगा और सुनाऊंगा।
1: की बिल्कुल। और ये गाना जो बताया वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: अरे एकदम एकदम, हमारा मित्र लोग है, एक दुबई में बिट्टू है उनको, और एक मध्य प्रदेश में है सोनू भाई को, और शशिकांत को, वो भी कुवैत में है, इन्हीं लोगों को मैम। वो लोग भी रेडियो है ना मोबाइल के माध्यम से, वो भी लोग सुनता है, तो वो लोग भी बोले थे कि अगर कभी फोन लगेगा तो यार मेरा भी, मुझे भी डेडिकेट करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, याद आएगा तो जरूर करूंगा। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं मैम। और हम लोग कटिया में जो भी दुकान वाले भी रेडियो का अपने जैसे सैलून वगैरह होता है उसमें भी लगा कर रखते हैं, और हम लोग जाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हैं फिर भी।
1: अच्छा जी चलिए मैम, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: सलाम अलैकुम मैम।
6: वालेकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: गोपाल में
6: जी, कैसी हैं
7: आप? मैं आपने बताया कैसी हूँ
6: जी? मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या कर रही थी आप?
7: बस आपके पास कॉल लगा रही हूँ, बच्चे साथ में कॉल कर रही हूँ। लाइक भी दिया बहुत अच्छा। मौसम कैसा है मैम? तो बारिश हो रहा है,
6: इधर हल्का धूप निकला हूँ।
7: हाँ, इधर भी बारिश हुआ था, बहुत तेज हुआ था, करीब 10 बजे करीब। अभी भी धूप हल्का बिगड़ गई है, मतलब मौसम ठंडा
6: जी। तो वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
7: गोपालगंज से बोल रही हूँ।
6: गोपालगंज में कहाँ?
7: सारिया जी, गोपालगंज में पड़ता
6: है। चलिए ठीक है, तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
7: मेरा गाना सुनना है।
6: बता दीजिए।
7: देखा तो ये गाना सुना, क्या होता है जो गाना सुना।
6: और गाना
7: कैसे कर दे आपको, जितना भी मैं सुनने वाले भाई और बहनों को सबसे सुनाना चाहती हूँ अपने घर वाले को।
6: गुलना जी, तो फिर आपको
7: बाय
6: बाय। सुनते रहिए सब साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
1: जी मैम धन्यवाद, मैं सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ से।
0: जी
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे यार आप फोन लगाते हुए मैम, तो बहुत मुश्किल से तो अभी तो फोन लगा मैम, एक घंटा हो गया ट्राई चलते चलते मैम। जी जी जी बहुत बिजी जा रहा मैम।
0: जी जी
1: और मैम वहाँ का मौसम पे क्या हाल चाल है मैम?
0: मौसम धूप निकला हुआ है,
1: बारिश नहीं है मैम?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही है
1: जी, हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है मैम, अभी धूप है। अच्छा मस्जिद बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो आज एक फरमाइश है में, हम आपके हैं कौन और गाने को बोल है दीदी तेरा देवल दीवाना, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते। ना आपका नाम बता दी। चीनतनी नाम बता दी फिर भी। अच्छा, हम बताए
5: रघुआ बताइए
6: तो हम तो बता दी कि गणेश बोला था नी ना। अरे कहा ना कि कहीं गलती से की वर के नाम रख देती तो दिक्कत हो जाती ना।
5: और
6: सब बढ़िया बा, लेकिन ऐसा मत पूछी काहे कि रहुआ जगह पर की वर है पूछी या दिखरा और नाम धरम संत।
5: अब क्या होता है?
6: कुछ ना, बस रहुआ सभी से बातें होता है।
5: स्लो
6: रहो, चला रहो, चला तो हम चला ले, लेकिन आप जन कॉल रिकॉर्ड पत्र नहीं करो के तो बनावा जरूरी बने।
5: दोपहर बाद में बना सको, बना सको समाचार बाद।
6: जी तो समाचार के बाद भी तो सोच रहे था ना।
5: चले रहा था ना, चले थी कोनो काम से हार ना मान रहा, ठीक बा। हिम्मत लेकिन ना हम कहे।
6: जी जी, रहुआ सभी बानी ना तो फिर हम कहा हिम्मत हारे।
5: चलो ठीक बात, मेला दशहरा के बाद बोलो तेन।
6: और गाना के लिए सुनवाए के
5: लिए डेट कॉटन रहुआ के, सोनी दीदी के, आरती दीदी के और दिव्या दीदी रखे हैं और कृष्णा को भी और जितना रेडियो सुन रहे हैं सभी को डेट करना चाहते
6: हैं। ओके, तो फिर प्ले कर।
5: ठीक बात, ठीक बात, हम सुन ठीक बात गाना बजाए।
6: हाँ बिल्कुल, ठीक बात, प्ले कर देना। सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.1 में।
0: नमस्ते दीदी,
1: नमस्ते
0: क्या हाल रहा है?
1: जी बढ़िया बा, अपन बताइए।
0: सुनो क्या है ना, उठाएंगे
1: अभी तो, अभी फोन आ होता तो अभी तो उठाएंगे। यहाँ
0: कॉबे रिंग करा कर कॉबे से।
1: अच्छा, किससे पहले बात होत रहा?
0: हेलो मनोरमा दीदी है की भारती दीदी? मुझे आते नहीं क्या होती है,
1: रउआ पहचाने की हम क्या बोलते हैं?
0: लागत मनोरमा दीदी, कहते नहीं अजी लागत है। बोलिए, आज सब खाना वाना हो गया?
1: हाँ हो गए बारा। और भैया?
0: हाँ हाँ ये भी हो गए
1: जी। वैसे नाम बता दी अपन,
0: करिश्मा कुमारी तीसरा नारायण से।
1: आरा और भैया कैसन बनी?
0: भैया ठीक, भैया ठीक बना। हम सब को लागत रहा सलाह नहीं है, कल जा हम धारा है देनी है, एक ही बार में लाग गए लेते।
1: देखिए हम भी, हमके भी पता चल गया कि रउआ फोन करता है, वैसे उठा लेंगे जल्दी।
0: हाँ
1: मरवा तो ना पहचान है, लेकिन आवाज से पहचान लेनी है। बहुत ही अच्छा बोले नी
0: रुआ, भी बहुत अच्छा बोले नी।
1: हाली
0: सब तो मत समाज राहुल लगेला एगो भारतीय दीदी से।
1: हम तो बता दीसन कि हमने के दोनों जानी से अच्छा रहुआ बात करे नी,
0: रहुआ करे नी
1: अभी तक
0: घर बोली अच्छा लगेला रे। तो सो चलिए बेरा,
1: वो तो ना चली, कहे से कि
0: ना चली
1: ना, कहे से कि अब हम ई जन कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो एकरो के तो बनावल जरूरी बना।
0: हाँ बिहानो ना चलिए,
1: तो 2 दिन तक बंदे रही।
0: कौन तारीख चले?
1: अब देखिए जब भारती जी आ जाए तो स्टार्ट हुए, अगर टाइम मिले तो कहीं हम ही स्टार्ट करें।
0: हाँ क्या करें अब,
1: टाइम के हिसाब से देखा जाए ना।
0: मेला घूमा चले
1: ना, कहाँ पुरसत द मेला घूमे के, मेला घूमे चल जाए सन तो फिर रउआ लोग के फरमाइश पूरा करी।
0: मेला चल जाए घूमे,
1: रउआ गए नहीं है कि ना?
0: हमने गाँव का भी नव आई मेला तक नव जान सन 25-26 ले बाटे हमने गाँव का मेला।
1: अच्छा अच्छा, तो
0: जाए
1: बहुत मेला से उठाई ले ले हैं।
0: हाँ ले ले हैं
1: जी। चलिए तो क्या बात की फरमाइश?
0: फरमाइश रहुआ पसंद से, अपना पसंद से
1: ना ना रहुआ लो, इतना मुश्किल से कॉल कैले बनी लो, तो रहुए लो बताई थी तो ठीक रही।
0: आज रहुए पसंद से सुन ले करनी।
1: अच्छा
0: कौन बजा दी अपना पसंद?
1: हिंदी की भोजपुरी?
0: भोजपुरी बजा दी कौन?
1: चलिए ठीक बा, क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
0: हाँ सबसे पहले रहुआ के, भारती दीदी के, सोनी दीदी के, जितना सुनता है वहाँ लगे। और
1: चलिए ठीक बा, तो रहुआ गाना प्ले करता नहीं।
0: ठीक है, बाय
1: बाय। सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: मैया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये, एक तेरा ही सहारा है।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।